ভাবতে তুমি মাও শক্তি হৃদয়ে তুমি

आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, सब संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जुलाई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कभी आंचल नहीं छुप जाए।
1: आए
0: आए मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती।

0: 嗨嗨
1: 嗨嗨，
2: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गाई हुई। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
3: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
3: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
3: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
1: जी
3: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
3: जी
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियां। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
3: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
3: जी
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
3: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
1: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
3: जी
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
3: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह डब्ल्यू

0: www है
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी ये होता क्या है?
1: अजीत जी ये कोई इंटरनेट नहीं है लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
0: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
1: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी,
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: British Airways announces the departure of its flight number BA401. Passengers can leave seat boarding to gate number 10. Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंचाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फातिमा।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहा श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ, आओ चलो।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ
3: पापा, पापा वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा

0: अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो, वो देखो, औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा, अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्मचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड है, वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरो के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरो की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
2: ओ,
1: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगे।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, कादिर आओ।

0: श्वेता कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर
0: बताऊंगा। अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस
0: अंकल वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील

0: नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता, बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछ कर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर में सुनेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21

0: 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि ये योजनाएं देश में आधुनिक और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इनसे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा और देश की माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक पहले सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां खड़े लोगों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया, जबकि जालौर के भाद्राजून क्षेत्र में पहाड़ियों से झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार पाली जिले के देसूरी में 8 सेंटीमीटर, जोधपुर के झवर में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी 2 इंच तक बारिश हुई, जबकि दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी चैनल FM 101.8 MHz पर। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम पनिहारी।

पणिहारी कार्यक्रम सुननाड़े मुजफ्फर श्रोताओं नौ थोड़ी आपरी रेडियो सखी तृप्ति भाटियारा प्यार भरा रोम रोम। बहनों आपो देखिए कि आपरे आस पास को जो को मौसम है वो परिवर्तनशील है और पौनी रे वास्ते जो को त्राही माँ माड़ी स्थिति रे वो आपरे मरु प्रदेश में कोई नई बात को नहीं। और ये मौसम रे मोए जब आपको लगे

वर्षात्री आवन जी एक उम्मीद है, और तो जल नौ सहेज नौ बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। ए बात तो सबनों ठा है, पर एड़े ठोन मते रवनो जिके में जल हमेशा बहुता यात में कुन उपलब्ध है, या जना आप ए देख जे कि भाई अगर पानी नहीं आयो तो चलो कपड़ा मत धो। आप छोटा छोटा जो दिनचर्या रा कौम भी वो भी घनी बार ये वास्ते अव्यवस्थित या आप जो किनो कह सकते कि वीरो ऊंच नीच समय हो जावे, क्योंकि अपन ये चीज़ लगे कि भाई हना अगर पौड़ी ये चीज़ में लगाए दियो तो काल तो अपनो बासन धोन में पौड़ी कौन रहे, घर में रसोई बढ़ाने वास्ते भी अपनो सोचना पड़ते। तो बहनों ये सब चीज़ों ना मद्देनजर रखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ो सिक आप रे वर्षा रे जल ना जो कि अमृत तुल्य मनियो के साथ ही साथ वो एक अपनों कह सकते कि फ्री री चीज़ है। वो जल अगर अपनों मिली हो है तो कौकर ऊन आपो सहज जाए ताकि ऊर आपो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सक जाए। बारह मास तो बरसात वह कुनी वो तो रुत में वे वो भी हर टाइम की पीक हुई, तो ये चलना सहेजन वास्ते आपको की कर सकते। सब सोच को एक पहली चीज़ है बहनों वो तो यह ख्याल रखन रही है कि बारिश तो जो वन रो टाइम वे वो से पहले अपन सोचनी चाहिए कि कया घर में आप खाली बाल्टियों खाली ठो हैं या कोई टंकियों हैं या कोई ऐड़ा कोई बर्तन है ऐड़ा कोई व्यवस्था है जिकी मैं आपको बारिश से जल नो सीधो सहेज लीजिए। पहली बारिश से जल नो कहो जावे कि तो सही कौन रवे, और उर बाद भी जब बारिश आवे तो बारिश आवते सोए खाड़ों बखे खाड़ों में अगले घरों में खाड़ों हैज करे तो शुरुआत में तो की वे खाड़ों बखे तो गंदगी जितनी भी वे सब बह जावे। उरे बाद में एकदम कांच जड़े जब पानी आवन शुरू हुए तो आप वे पानी भेड़ो कर सकते। और आजकल की प्रदूषण रो समय है तो जो बारिश रो पानी अपन सीधो मिले उवे रे मोए भी घनी बार धूल मिट्टी का कण आ जावे, क्योंकि आप मरु प्रदेश में रह जे हवाओं में भी मिट्टी का कण होया करे तो उवे पानी ना भी आप कहे पार्लर पानी सीधो तो पानी वापरन वास्ते कौन आया करे। हाँ अगर टोको में डालो तो ठीक है, समय रे प्रभाव से धूल मिट्टी या कंकराड़ी कोई भी चीज़ वे अशुद्धियों वे तो धीरे धीरे नीचे टूंडे में बैठ जावे। लेकिन अगर आप मैंने सीधो आप पियन री माटकियों में या ठो में छोड़ना चाहे तो वो वास्ते यही है कि बाल्टियों भी जो पानी ना रख दो ढकाए के ताकि पूरा नीतरी जावे। जब भी उरी दो एक दिन में वे सारी मिट्टी वे वो पूरी नीचे बैठ जावे, वो पानी ना बिना नीचे से हिलाए के और मथे मथे सो नीतराए के, लेकिन आप भाषा में कहो नीतरा आनो नीतराए के अच्छी तरह से मतले पानी ना पो अवेर लेजे। तो वे पानी ना थे लो और टूंग आड़े पानी ना छोड़ दो, वो पानी इतो बढ़िया मनियो जावे और कहो जावे कि ये पानी ना करते साल भर भी भेड़ो कर रखो तो इनमें कदे भी एक जो भी नहीं मैल आवनो गंदगी होना या कदे इली लट पैदा होना कुछ भी ये जल में कदे भी को नहीं। ये पानी री ए सबसे मोटी खासियत है। तो बहनो ए तो है कि पीएन रे तरीके री बात, और हाँ बड़ी बात है भी है कि ऐज को वर्षा और जल भी कहो जावे कि इनो पीएन सो पेट री बीमारियां दूर हुई पेट साफ हुई। आजकल हर बीजो व्यक्ति आप कह सकते कब्ज सो परेशान है, कब्ज मस्तो पेट साफ को नहीं रहे। कारण तो सबसे आसान सबनों ठा है कि आप खराब दिनचर्या आप खाने में ऐड़ी चीज़ों रो प्रयोग हुए आप खानो ऐड़ो हो चुकी है कि आप मुंडे रे स्वाद ऐड़ा रहे कुछ भी चीज़ों रो सेवन कर लीजिए और वो चीज़ों सुपाच्य को नहीं वे। आखिर शरीर की मशीन है वो उन्होंने खूब परिश्रम करे बट वो भी वे अगर वे नहीं पचा पावे तो की वे वो खानो जस रो तस पयो रवे। तो बहनों बारिश में जो पौनी है ऐ कहो जावे कि खाने में पचाए दिया करे और आप इतो हल्को वे कि अपन बधिक से बधिक पियन रमो आवे। तो बहन हाँ वो बात करी कि कौकर आप पार्लर पौनी ना ई ढंग सहेज रहे ताकि आप जो कौम वे वो ढंग से जल रो कम कम पियन जो शुद्ध जल है वो कौम तो अच्छे से हो जावे। और अगर थोकन व्यवस्था है तो बकायदा साल भर रे वास्ते भी स्टोरेज कर ये पौनी ना वापर सको। अगर थोकन ने पियन रे पौनी ना सहेजन व्यवस्था को नहीं सामान्य व्यवस्था है तो बाल्टियों में भर के रखो टोको में डालो और साथ साथ दिन रात

0: तीन दिन वाला जो कॉम है चौथा लगे बारिश गिरे पई तो अगर पौनी तो कुछ भी कॉम करना है तो वे जल सूझ हाथों हाथ भेड़ो कर वे कॉम न निपटाए दो ताकि कुछ न कुछ पौनी जो है बचे और बढ़ती कोशिश व्यवस्था होनी चाहिए कि छतों री जो निर्माण है क्योंकि पुराना घर तो देखो है अगर वो ना आप सही करवाए सके तो बढ़िया है नहीं तो भी जो नवा घर बने वो में कुछ ऐड़ी व्यवस्था है कि छतों मथे बारिश जल भेड़ो वे और उर बाद वो टोके में जावे या वो भेड़ो वनरो और सिस्टम बहुत आसान है तो ऐ करके आपो कम से कम बरसात के दिनों में तो ऐड़ी व्यवस्था कर सकते कि आपो प्रकृति रे दियोड़ी ये नियामत रो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर और आप पर खुद रो जो जल है जल का जो भंडार है वो ना आपो थोड़ो से आपो वरी बचत कर सकते क्योंकि आप जो कि प्रदेश में आप रह जाए उन्हें की है गर्मी इतनी ज़्यादा पड़े कि काफ़ी सारा जो जल भंडार है वो जल वाष्पीकरण के द्वारा भी समाप्त हो जाए तो बारिश से जल ना सहेजना आवश्यक है और ये सो आप काफ़ी सारी बीमारियों दूर भी साथ साथ ए मिठो जल भी तो अगर कपड़ा धोने वास्ते भी ये जल में इस्तेमाल किया जाए तो अपन देख जाए कि मैल गंदगी जल्दी छूट जाए और कपड़ों में भी नुकसान कौन पहुँचे तो कोशिश ऐसा करनी चाहिए कि जो पीने वास्ते वापरो साल भर सहेज रखो और व्यवस्था करके देखो और जो भी कौम है जल रहा वह दिन रहा अगर ठापड़े बारिश आ रही है तो वह पानी से निपटाए देना चाहिए और तो और नए कंस्ट्रक्शन वाली व्यवस्था है कि वो जल नापो आप जलीय भंडार जो घर री टंकियों घर का टोका है वो में भी आपो बहनों डाल सकते तो बहनों और भी आपो कीमती बातचीत कर सो पहले समझे जरूरी संदेश और उर बाद में मारवाड़ी गीत
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए

बहनों आपो अंतराल तो पहले बात करी थी वर्षा जल नो भली भांति सहेज रही। बहनों आपो कोई भी चीज़ नो क्यों सहेजी, क्योंकि वो आपरे वास्ते कीमती भी, और अगर भी नो सहेज जे तो आपरो जीवन थोड़ो सी आसान हो जावे, साथ साथ वे चीज़ री मूल्य रो भी आपो अंदाजो वे जिके वास्ते आपो विनो पूरो महत्व दीजिए। तो मैंने कुछ ऐडीज बात आप और रिश्तों रे साथ भी होया करे कि समय रवते अगर आप रिश्तों रे कदर नहीं कर जे तो बाद में आपन बहुत मलाल भी, और कुछ रिश्ता आप और जीवन में ये रिवाज करे ताकि वो आप और जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सके, आप और जीवन में कुछ सुधार कर सके, आप और आप जीवन में

कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये रिवाज से भगवान अपनो जीवन में कुछ न कुछ ऐड़े रिश्तों को समृद्ध जरूर बनाया कर सी। तो हमें आपको की कर सकते आपो मैंने लेकिन आपको कह सकते कि बहुत हल्के में ले जे या आपो मेरी कदर कौन कर जे तो ठीक है नाड़ी किस्मत है। लेकिन कोई भी रिलेशन री रिश्ते री कद्र करने वास्ते कुछ चीज़ों आवश्यक रही। सबसे पहलो है उन्हें धन्यवाद देना। अगर कोई भी रिलेशन की वजह से आपको लगे कि आपको कौन बढ़िया वे पिया तो जरूरी है विनो धन्यवाद देना। धन्यवाद देवन से की वे धन्यवाद देवन से आपको अहम दूर वे और साथ ही साथ आपको हार्ट चक्र जिन्हें कभी अनाहत चक्र वो जो को कौन है वो बैलेंसिंग बढ़िया वे और आपको मन से विनम्र बन जे। जब भी आपको विनम्रता अपने जीवन में अपना जी तो नेचर यानी आप जो प्रकृति है वो अपनो और भी ज़्यादा धन्यवाद देवन रा मौका देवे। मैंने एक वैज्ञानिक और रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सेट है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी और आपो जेड़ो कॉम कर जे या आपो जेड़ा खुदरा मनोभाव रख जे आपो ब्रह्मांड री सेम वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्शन स्थापित कर लीजिए। जिके टाइम आपो मन में अड़ी भावनाओं जिको कि कह रहे भी वास्तव हितकारी को नहीं रख जे तो आपो ओड़ी फ्रीक्वेंसी अटैचमेंट अपने आप आपको कर लीजिए तो अपना सब रिश्ता उड़ाई जुए। कुछ लोग आपो देख जाइए कभी कि मैंने बेड़ो हमेशा बुरो ही जुए मैं बेड़ो कदे भलो हो नहीं जुको मिले मेरे साथ गलत किए वो हर रिश्ते से दुखी हूँ। तो अगर उरे मन में ये बात बस गई है तो हमें उरी फ्रीक्वेंसी वे खुद सेट कर दी है तो हमें जुको भी रिश्तों उन्हें मिल से वो हर रिश्ते में ऐ ढूंढ से कि कमी की है या वो मेवड़ो खराब की थी और ये चक्कर में वो खुद हमेशा बीजों से बुरो बर्ताव करे क्योंकि मन के चले कि ब्याड़े भिड़ो कर हमेशा गलत हुए तो हूँ कह भिड़ो अच्छो बर्ताव क्यों करूँ। और घनी बार पूरी खुदरी वजह से पूरा रिश्ता खराब होना शुरू हो जाए तो कमन का मतलब है कि अगर आपको आपकी फ्रीक्वेंसी धन्यवाद रिसेट कर दो तो की हो से कोई ना कोई आप वास्ते कुछ ना कुछ अच्छो कर जाते आपो के जासो आपन सब अच्छा लोग मिलते कोई थोड़ी मदद करते थोड़ी शक्ल देखे लोगों ने लगते कि अरे थे बहुत जेन्युइन इंसान हो तो लोग आते थोड़ी तरफ मदद हाथ बढ़ाते तो उसको प्रेम से बात करते तो थोड़ा की लगता अरे हूँ जेत जावे थाने मतलब सब मारे तो दोस्त बन जावे। और फिर वो कारण की है कारण सिर्फ इस तो है कि तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस सेट कर दी है तो हमें थे जेत भी जाओ थोड़ा कोई भी अनजानी जगह जाओ तो डरे जो लगे और जो आदत है वो तो चमत्कारी ढंग से काम करे क्योंकि ब्रह्मांड एको नहीं सोचे कि थोड़े वास्ते सही किए गलत किए वो सोचने जिम्मेवारी भगवान आपो मत दे दिए। भगवान आप और जो दिमाग है वो बनाया हुई वास्ते है कि थोड़ा थोड़े बारे में जो सोचना है सोचो हमें करके खुद ही आपके बारे में खराब सोच दो तो ब्रह्मांड दुनिया भगवान कोई कुछ कौन कर सकते तो आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है कि भाई मुना सब बढ़िया ही मिले तो थोड़ा कोई भी अनजानी जगह अनजाने रिश्तों में जाओ तो डर कौन लगे नई स्कूल नई कॉलेज या नए स्थान में जाओ तो कुछ लोग डरे लेकिन कुछ लोग बिल्कुल कौन डरे क्योंकि वो ना है कि लोग आप पर चढ़ाई जो है अगर गलत टाइप का कुछ लोग मिल सके तो वो तो दूर ही बनाए ले सो और जो को आप पर तारतम्य ताड़ा हो से वो तो दोस्ती कर ले सो तो यूँ करके वो लोग आपके जीवन में हमेशा खुश रहा करे। तो मैंने खुशी रो चयन करना है या हमेशा खुद रहे दुख नो महिमा मंडित करना है अरे मैं इतना दुख झेलिया अरे हूँ की बताऊँ मैं झड़तों को परेशान हो कौन सके आप दुख की व्याख्या करनी है महिमा मंडित करना है या वो सब चीज़ों में छोड़ के जीवन में कुछ ऐडो काम करना है कि हर जगह हर कोई थोड़े आवन तो खुशी महसूस करे तो वो आप और आपके हाथ में वो आप और सोच है तो ज़रूर थे बारे में विचार कर सो और सोच सो कि आप अंततः आपकी मौरी जो मॉनिटरिंग है मौर्य सिस्टम है वो कई फ्रिक्वेंसी मतें सेट करनी है और भी समझ गीत और बड़े भी कर सो तो बातों।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो बहन आपको सुनिए जरूरी संदेश, और वैसे पहले सुनिए सीमा मिश्रा की आवाज में गावड़ो मीठो से मारवाड़ी गीत तानो जड़ी चुंदड़ी। तो बहनो मौसम री बातों करी, घर री बातों करी, समाज री बातों करी और वनोरी भी बातों करी, कोकर वर्षा रे जल नो सहेज रे ऊ री भी बात करी, और हमें रंधोणी री रोणी यानी कि आप लुगाई बात कर जी आप चूल्हे और चौके री। तो बहनो आप कर्मस्थली चुल्लो चौको है, और जिके ना कहे कि मनो चाहे मत बनो आप ज्यादातर समय ईरे मोर जावे, तो क्यों ना आप रसोई घर नो एड़ो बनाजे कि वो में जावन रे वास्ते आपो उत्सुक हो जाए, ना कि मथे में कभी मारवाड़ी में चोट पड़े अरे बड़े मोए जावनो, बिल्कुल ना, क्योंकि आपकी कर्मस्थली ना आपो एक पूजा सुकम कुन बन जाए, और पूजा जिके जगह की जावे वो जगह साफ सुथरी और पवित्र। तो मैंने छोटा छोटा सी टिप्स है जो को अगर आपको अपना सो तो आपो आपकी रसोई ने बहुत ही सुंदर सुगंधित और सुरम्य सौंद रूप में जरूर परिवर्तित कर पा सो। सबसे पहला सिद्धांत है तीन रो सिद्धांत, यानी कि तीन चीजों की सफाई हमेशा रवनी चाहिए, वो टाइम जब चूल्हे चौके नो समाप्त करो, यानी कि दोपहर

पहले खाना समाप्त हो और ते किचन से बाहर निकलो पिया। वो टाइम में थाना की करना है, तीन चीजों की सफाई रो ख्याल रखना है। पहलो सिंक, अगर बर्तन सिंक में पड़िया भी है तो भी अपनों की करना चाहिए वो बर्तनों नो और जो फूड वेस्ट वे ठीक है वो ना निकाल के पच्चे बासनों नो सिंक में छोड़ना अगर आवश्यक है तो, ताकि अगर बासनों में कुछ भी खाने रखने वर्ण लगोड़ा है नहीं, तो जब आप चौके में प्रवेश करते हो अच्छा एक दो घंटे अंतराल के बाद में, तो वो टाइम वो एक अलग सिख जिकन आप कहे सजे दुर्गंध वो समकक्ष आप वे खुशबू न रख सकी वो अपन महसूस हुए और उम्र में जावते अपने आप मुंह भी जापुरा बनना शुरू हो जावे। तो मैनो चाय दूध के वास्ते अगर आप चौके में जाजे समझा रहे या ढलती दे पार में, तो चौके ने छोड़न रे टाइम ए बात ध्यान देवनी जरूर अपनों रखनी चाहिए। बीजी चीज है जो को फूड वेस्ट जो को बास्केट है ओ वे ना अगर वे ना कदे भी भरोड़ी मत छोड़ जाओ, जिके टाइम थोड़े चौके रो एक पारी रो काम समाप्त हो वो ना खाली कर दो। और कदे भी ए काम नहीं करना कि एक मैनियो मंडी हो वो मैं नो खाली कियो और पछे मैनियो ने बाहर फेंक दियो। वो तो कि वे जानवर जो को वे और घ्राण इंद्रियों घ्राण शक्ति यानी कि सूंघन शक्ति इतनी तेज वे कि वो केत भी थे मैनी ना अगो बाड़े में नोक दो वो कदे न कदे मैंने खोज निकाल से और मैनी समेत वे नो खाए जाते। और ए एक तरह से अपनों जो पाप मिली थे तो बहनों ए है बीजों को कि कदे भी मैनी में मत डालो और आप फूड रिच को बास्केट है वो ना हमेशा खाली करने जा पे पारी समाप्ति करो, चाहे वो सुबह पारी है चाहे वो रात्रि पारी है। और तीसरो प्रमुख सिद्धांत ए है कि आप हाथ पूछन दो कपड़ों आप हाथ पूछन दो नैपकिन जो किचन में रहा करे वो साफ होना चाहिए। अगर थोड़ी पारी समाप्त हुई की है और दोपहर खाने में थोड़ा ज़्यादा चीज़ों बनाए और वो कपड़ों अगर गीले होएगे तो तुरंत वो ना बदल दो, पारी समाप्त हुई थोड़ी वो ना बदल दो, ताकि जब दोबारा से चौके में प्रवेश करो जब हाथ पूछो तो कहो लगे घनी बार आप नहीं बदल पाजे तो गीला हाथ पौनी रापो करिया धोया और हाथों में पहले से ज्यादा स्मेल आने शुरू हो जाए। तो किचन री मोए जो को भी आपको नैपकिन यूज कर दे होया की करे बघार या कुछ भी अड़ी चीज हो तो वही जो को गंध वे यानी दुर्गंध ना वाली गंध वे वो में बस जाया करे वो नैपकिनों में बस जाया करे और वो में एक अलग सी एक खुशबू आया करे। और वो अगर बस जावे तो हाथ मुँह सबों में भी आ जाते वो नहीं बस पावे फिर वास्ते पहले सोच वो नौ जब गीलो हुए थोड़ो पियो थोड़ा लगे पियो तो वे पूरा गीलो गंदो बन इंतजार मत करो और वे नैपकिन नो बदल दो। इसके अलावा एक और जरूरी बात है बहनों कि जो को आप रसोई है नी इरा मसोता वे यानी रोटी उपसाना जो को भी वे या रोटी बट जे आप रोटी डब्बे में डाल दी और नीचे आला जो को कपड़ा वे वो सब चीज़ों कपड़ा जो को वे आप क्या में धोजे आप उस डिटर्जेंट यूज कर दिए जो आप साधारण कपड़ों वास्ते इस्तेमाल कर दे ए नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारा ऐडा बर्तन धोन रहा है गया जो को कि इको फ्रेंडली है या और मैं बहुत न्यूनतम मात्रा में खार उपयोग किए गए मैं हानिकारक केमिकल कौन डलोड़ा वो मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली जिके ना कह जे वो चीज़ों का इस्तेमाल हुए नींबू और वे तो जरूरी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श कौन में। तो हमेशा किचन रा रसोई रा जो को टावल है या रसोई रा जो को मसोता है या रोटी और नीचे रखने वाला उपसाने वाला कपड़ा है कोई भी प्रकार है वो ना हमेशा जिके ना पो एक आजकल की भाषा में माइल्ड ओड़े केमिकल इस्तेमाल तो जो को भी चीज़ों बढ़ोड़ी है वो ना हमेशा ओड़े रिमोज धोना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जो को भी आप किचन में चीज़ों इस्तेमाल कर दी वो रिमोए हमेशा एक अलग से खुशबू आया करे जो को कि वे पदार्थ रिवे जिके द्वारा मैंने धोयो जावे। तो अगर मेरी खुशबू आ रही है तो मन के चलो और कुछ ना कुछ अंश वो मसोते में वे किचन में नैपकिन में जरूर रह गए और जो को आप भी शरीर तक पहुँच से आप उन्हें नुकसान पहुँचाने में सर्वथा सक्षम है। तो ये वास्ते ये बात को ख्याल रखना है कि खावन री चीज़ों जो को आप पेट में जावे वो शुद्धिकरण के वास्ते अपन सोचना चाहिए
और अपने ओड़ा ही कदम भी उठाना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा था जो कार्यक्रम जरूर पसंद आए उसे, और इतनी सारी बातों में तो कोई ना कोई बात ना मुझे प्यारी बहनों जरूर घंट बन ले से, और मैंने अमली जामो भी जरूर पिला से। तो बहनों मन तो को नहीं, लेकिन जो को समय री घड़ी री जो को सुई है वो इशारो करे कि ले ली जावे कहो तो विदा, ताकि बहनों भी अजी सारी बातों नो आपरे दिनचर्या में उतारे और आपके कौम काज नो सुंदरता से अंजाम दे दे। तो पच्छे मिलन रे वादे साथ हूँ तृप्ति भाटिया, तो आपकी वीडियो तक ही लौट थो इजाजत। राम राम।

0: covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. They agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. The two sides also agreed to strengthen collaboration in manufacturing, food security, and digital technology.
1: भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी।
0: Mr. Modi expressed gratitude after being conferred Indonesia's highest civilian honor, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. He dedicated the award to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.
1: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture, and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
1: हम development, security, technology, culture और education हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Mr. Modi said both sides have reached an important understanding to strengthen supply chain resilience in critical minerals and steel. He added that companies from the two countries are beginning new partnerships in stainless steel and rare earth magnets. The Prime Minister said India's Unified Payments Interface, UPI, will soon be integrated with Indonesia's payment system, promoting both ease of doing business and ease of travel.
1: People to people ties हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: Earlier, Prime Minister Modi received a ceremonial welcome at the Istana Merdeka, the presidential palace. Defense Minister Rajnath Singh also congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia. In a social media post, Mr. Singh said this exceptional honor is a resounding recognition of Prime Minister Modi's visionary leadership, transformative statesmanship, and steadfast commitment to advancing India's national interests. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the conferment of Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia Medal of Honor upon Prime Minister Modi is a matter of immense pride for all Indians. The Gujarat High Court today upheld a special court order sentencing 38 convicts to death and 11 others to life imprisonment in the 2008 Ahmedabad serial blasts. A division bench of Justices A.Y. Kokje and Sameer Dave rejected all appeals against the order of the lower court and upheld its verdict, confirming the sentences to members of the terror outfit Indian Mujahideen.

0: the case. On July the 26th, 2008, a series of 21 bomb blasts ripped through Ahmedabad in a span of 70 minutes, killing 56 people and injuring 200 others. Some hospitals in the city were also targeted. A special court in 2022 sentenced 38 Indian Mujahideen members to death. The court had also sentenced 11 other convicts to life imprisonment. The government has debunked videos circulating on social media falsely claiming that the Chinese army has entered 60 kilometers into India. The fact-check unit of the Press Information Bureau said the claim is fake. It further clarified that the videos being circulated are unrelated and not from the India-China border. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir, PUK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on July 9th if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. The committee has called upon residents throughout PUK and members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July the 9th. Thousands of people took to the streets demanding an end to the alleged blockade, restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of the 38-point written agreement. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the president said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy. Expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament, President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The president extended her best wishes to all the teams and players participating in the tournament.
1: हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: The Union Ministry of Tribal Affairs Ministry has unveiled a renewed vision for strengthening tribal research institutes as engines of knowledge, innovation and evidence-based policymaking for tribal development, inaugurating a national workshop in Bhubaneswar today. Union Tribal Affairs Minister Joel Oram called for integrating indigenous wisdom with cutting-edge technology to preserve tribal heritage and promote inclusive growth. Our correspondent reports.
2: The two-day national workshop on strengthening tribal research institutes began in Bhubaneswar this morning, bringing together policymakers, researchers, academicians and technology experts from across the country. Inaugurating the workshop, Union Tribal Affairs Minister Joel Oram said, tribal research institutes must evolve into centers of excellence that seamlessly blend indigenous knowledge with modern research and technological innovation. He underscored the need to preserve tribal languages, culture and traditional knowledge while leveraging digital technologies and artificial intelligence to strengthen research, documentation and policy formulation. A major highlight of the workshop was the launch of TribeX, a first-of-its-kind digital learning platform dedicated to tribal arts, culture, languages and traditional knowledge. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. He said Prime Minister Narendra Modi had launched the Ek Ped Maa Ke Naam campaign to promote environmental conservation. The Home Minister highlighted that the government is continuously working to clean the Yamuna River. The Enforcement Directorate today conducted searches at five premises in and around Kolkata in the case of dishonest financial dealings and routing of suspected funds in the bank accounts of Trinamool Congress. The preliminary investigation by ED has revealed that huge funds of more than 150 crore rupees have been routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Ji Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the Holy Cave Shrine in Kashmir. The Indian Meteorological Department, IMD, has said conditions are favorable for southwest monsoon to further advance into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat and remaining parts of Haryana and Punjab and Rajasthan during the next 3 days. The Weather Department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. In Gujarat, heavy monsoon rains continue to lash several parts of the state, especially in Saurashtra and South Gujarat region, with Vapi and Valsad district recording a maximum of 8.5 inches rainfall in the last 24 hours, a report.
3: Heavy rains have affected normal life in the state, leading to temporary relocation of over 700 people, closure of 80 regional roads and power disruptions across multiple rural pockets. Waterlogging in the Mumbai division has led to cancellation of major trains heading from Ahmedabad, Surat, Jamnagar and Okha. As a precautionary measure, schools and Anganwadis in Surat and Navsari districts have been ordered to remain closed today. Meanwhile, the IMD has maintained its active warning for heavy to exceptionally heavy spells across South Gujarat and parts of Saurashtra, advising fishermen to avoid venturing into the Arabian Sea until 9th of July. Aparna Khunt, Akashvani News, Ahmedabad.
0: In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
5: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
5: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
5: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
4: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
5: मैं गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्रभोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
1: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
6: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जोएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
7: जनजाति समूहों का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा, जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों और ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है SD बर्मन का।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार श्री रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: साहित्य भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

0: इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं

0: इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: इतनी तुझसे मैं प्यार करूं।

0: की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।
1: तुम सैया गुलाब के फूल, कोई क्या मन से भूल, जो हमको छोड़ चले, लाता छोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल, कोई क्या मन से भूल, जो हमको छोड़ चले।

दूसो पिया दूसो चाहे दूसो हजारों बार बनाऊं दिलदार क्यों नजरें मोड़ चले।

0: संग छोड़ चले, तुम नाता छोड़ चले, तुम सैया गुलाब के फूल, कोई क्या मंदिर फूल जो हमको छोड़ चले, तुम नाता छोड़ चले, कोई सैया
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी, आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखी सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे।
2: जी, जी। और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।

0: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
1: या झरनों के पास, डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
0: लहर आती है,
1: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
0: वो रील मोबाइल से पानी में चला जाता है, खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चलेगी। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
1: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगह से पता चला है।
0: लाइक, कमेंट, आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
1: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं। और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं। तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं,
0: कितना चला जाता है। दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन,
1: जी
0: जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्ट देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव है वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
0: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ आप लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो उस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख तो रहे हैं हम जी। लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं। श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले अढ़ाई कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: याद है आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर,
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो हो गए। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलती ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में भी कुछ कहना है तो वो सीधे लिखो पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, मतलब सीधे नहीं कहना है कि आप पढ़ाई शुरू कर दो
1: जी,
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात करते।
0: तो कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज परीक्षा होती है।
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि

0: भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कई बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपए में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपए में लिया, हम तो कल ही 150 रुपए में लेकर आए। और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो जाता है, मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह, जो की संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की, किनारा कैपिटल नाम से।
1: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और अब जी अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह किनारा कैपिटल की, कैसे बनी, क्या इनकी जीवन का परिचय हुआ,
0: दरअसल
1: किस तरह से वो आगे बढ़ी।
0: क्या होता है दीपा जी कि हम कुछ ऐसी महिलाएं अपने देश में हैं, कुछ प्रवासी भारतीय भी हैं, उन महिलाओं से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है
1: जी,
0: बहुत सारे प्रेरक प्रसंग उनके जीवन में घटित हुए हैं। उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं या जानकारी देते हैं तो उससे बहुत सारी सखियों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, और हर ज्यादातर उन कामयाब महिलाओं के पीछे के लंबी संघर्ष की कहानी होती है
1: जी,
0: तो उन

0: कहानियों को सुनना, जानना, बताना हमारा फर्ज बनता है, तो हम अपने श्रोताओं को इसलिए हार्दिका शाह के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं।
1: जी, ये ऐसा नाम है ममता जी, जिन्होंने इस बात को सही साबित किया कि व्यापार का असल उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है, बल्कि समाज में उन वर्गों तक भी पहुंचना है जहां अक्सर लोग पहुंच नहीं पाते या उन तक कोई भी वित्तीय व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है।
0: जी,
1: तो एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार की है ये हार्दिका शाह, वहीं पली बड़ी, और अपने माँ को और अपने छोटे व्यवसाय के लिए उन्होंने बहुत पूंजी जुटाते हुए देखा था, खूब संघर्ष करते हुए उन्होंने बचपन में अपनी माँ को देखा।
0: संघर्ष इतना था कि 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अमेरिका के इलिनोइस स्थित नॉक्स कॉलेज से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ दिया। कोलंबिया के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस विश्वविद्यालयों के संयुक्त कार्यक्रम से एमबीए पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध कंपनी में काम करना शुरू किया। साथ ही वो विदेश के बहुत जाने माने विश्वविद्यालय सहित अन्य तमाम कार्यक्रमों में निःशुल्क मार्गदर्शक के रूप में भी वे काम करने लगी।
1: बिल्कुल, और वहां उन्हें अक्सर जो अपनी माँ, उनकी माँ जो पूंजी जुटाती थी ना, इकट्ठा करती थी, वो सारी चुनौतियां उन्हें अक्सर याद आया करती थी। तो मध्यम वर्गीय परिवार की वो थी, उस नाते दृष्टिहीन लेकिन महत्वाकांक्षी पिता और उद्यमी माँ की परवरिश में उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष देखा। लेकिन उनके पिता और गुजरात के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए थे, वे बॉम्बे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एक सफल प्रोफेसर बने और आज भी वे पढ़ाते हैं।
0: बहुत सारे संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के छोटे उद्यमियों, विशेषकर सूक्ष्म और लघु व्यवसाय के लिए पूंजी तक पहुंचना बहुत कठिन है। इसी विचार ने उनके भीतर परिवर्तन का संकल्प जगाया। वर्ष 2011 में उन्होंने एक कैपिटल की स्थापना की, किनारा कैपिटल। इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था, जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें ये विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी

0: की हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
1: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही है। वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
1: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। वो यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं।
1: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
1: चलिए। हाय राम।

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है। और कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है। रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया। वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी।
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे, दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चल रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित
0: पहुंचा
1: वो
0: दें।
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अभी
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: जी

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी,
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते

0: कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी। और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुछ चर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती है, कई जैसे संगीत के बारे में साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल देती है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़ी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल करें।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं।
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थे जानने के लिए, और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है, तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़े और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं वायरल होने का जुनून, जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल, तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर ले, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है। और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल है। अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग अपना डांस का,
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमने देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी ही बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के,
1: बहुत सारे
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया पर
1: नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया।
0: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है।
1: जी,
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही है कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव जरूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीजें जहां पर मिलती हैं, जहां पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहां पर मोल भाव नहीं कर

0: करना चाहिए वहां भी करते हैं। जैसे सब्जी वाले, सब्जी हाँ, वालों से हाँ। अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी, तो वो जरूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो, तो ठीक है हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोल भाव क्यों कम कर क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोल भाव नहीं करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होते ही है।
0: बिल्कुल,
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला? मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है। ज्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोचकर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहां जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

इतना यकीन है।

0: अब दीपा जी हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हर हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती है, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना।
1: हाँ,
0: अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मूल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मूल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मूल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज्यादा होते हैं, इसलिए मूल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज्यादा दुकानों पर मूल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मूल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है मूल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप जरा बताइए कि क्या कर रही हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पके
0: से है।
1: देखिए, जहां पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा, तो जहां जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल ना होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना, मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है, कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी, तो बात तो थी छोटी सी लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो

0: हाँ फिर अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो। तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना अपनी मतलब अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती है,
1: जी
0: तो अर्थ बदल जाता
1: अर्थ
0: है।
1: बदल जाता है। और देखिए यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं। वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है। इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है।
1: जी
0: और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा, जाओ जाओ, पर अब नहीं करते, सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
1: जी
0: तरह के
1: जी जी
0: डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही है और दुकानदार से कह रही है कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही है, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए, लड़कियां औरतें फिर वापस लौट के आ रही, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: ऐसे शहर कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहां पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहां के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपए बोले ना तो तुम 40 या 50 रुपए से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है।
0: तो 100 रुपए भी मिल जाएगा।
1: 100 रुपए मिल
0: आज तो हम सबकी हम आप भी खिचड़ी पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं
1: कभी
0: खिचड़ी पका
1: खिचड़ी
0: रहे
1: पक
0: हैं।
1: रही
0: अब कहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कारे कारे बादरा सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है,
1: जी
0: लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा, तो सुन लेते हैं ये गाना।
2: ओ उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, ओ उमड़ घुमड़ कर आई रे खटा, कारे कारे बदला दिखाई दाई रे खटा, चल चल पवन का बहर दीप का तरक चीत निकला नीर निकला झर झर झर झर झर धार झरे, ओ धरती ही जल से मांग भरे, ओ उमड़

हाँ हाँ हाँ।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनिया आए और इतनी संतुलित बारिश लेकर आए कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसे अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी,
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं, और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए, और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं
1: जी,
2: बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली, इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है, लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने एमबीए किया, फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए, लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी,
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियो कॉन से ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच, मैं यहाँ पे हाइपर सिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन,
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की, 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी,
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया, और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ हाँ।
2: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी,
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली।
1: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी,
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
2: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: हूँ। क्या बात,
2: क्या बात। I never imagined any other profession. बट जरिया नहीं मिल रहा था तो हाँ। नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था।
1: हाँ।
2: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है।
1: हाँ।
2: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है
1: जी।
2: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भाई लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
2: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
2: बहुत ज्यादा।
1: ये कितने दिनों तक चला?
2: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
1: जी, जी।
2: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
1: अच्छा।
2: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ न कुछ यहाँ पे।
1: हाँ।
2: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
1: अच्छा,
2: या फिर बस करना है इसलिए किया, तो सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी
2: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही लेकिन करना पड़ रहा है।

0: तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
0: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ, उस नजरिए से अगर बात करें,
1: हाँ,
0: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ न देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ,
0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
0: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
1: आइए सुनते हैं। जिंदगी

है अवतार नहीं, जो दे तो वो भेद बना प्यारे, चले गए भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल।

जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध।

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था दो साल के लिए, मैं जॉब छोड़ के मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है, वो तोड़नी थी मुझे आदत, क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहां पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरा अच्छे से, तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी और रिटायरमेंट के बाद में शी वाज टेकिंग केयर ऑफ अस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा,
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माय लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ
0: जी।
1: तो मैंने सोचा कि यार ये

0: एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है। तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
1: हाँ
0: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
1: अच्छा
0: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
1: जी
0: लाइन में लगने का नंबर भी नहीं आता था।
1: हाँ
0: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
1: अच्छा
0: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं अथॉरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
1: जी जी
0: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
1: अच्छा
0: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
1: अच्छा
0: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया
1: जी
0: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के। पहले सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
1: जी
0: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। वो आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
1: जी जी
0: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग जैसे आवापुर में अभी बात कर रहे हैं,
1: सहज और स्वाभाविक
0: सहज और स्वाभाविक
1: अभिनय जिसे
0: अभिनय
1: कहा
0: जिस
1: जाता
0: पे
1: है।
0: थे,
1: जी जी
0: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसे लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
1: जी
0: थिंग। तो ये मुझे वहां से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
1: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
0: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
1: जी जी
0: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
1: जी
0: और बाकी जगह शायद ये लॉबी लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है। लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
1: हाँ
0: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है इसलिए वो साथ में काम करता है।
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
1: जी
0: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
1: जी
0: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
1: जी
0: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूं रेगुलर।
1: अच्छा
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहां पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमोसफेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ।
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है उसका सामना होता है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे मगर एक ही तरह की वो उस टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था
1: जी।
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी,
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए।
1: हाँ। हाँ।
0: तो वो वही वाकया जो है
1: जी,
0: पहली फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने वाला जा रहा था कि बच्चे साहब के जमाने में शुरू हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय कोई संघर्ष नहीं
0: रहेगा।
1: तो जब तक हम इस जिंदगी में है, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर डिपेंड है। तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3-3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: ओहो।
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो। वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन परवाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ।
0: अच्छा।
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं। पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं
0: जी।
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: पड़ रहा है, क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी,
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए
0: जी।
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ।
0: अच्छा।
1: वर ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है
0: जी, अनाज का
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो 20-20, 25-25 फीट के कोठार होते हैं, जो पहले किले पे भी हुआ करते थे।
0: हाँ।
1: जहां पे लोग आके उस पे धान्य डालते थे, कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया।
0: हाँ।
1: कि ये काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा
0: जी।
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे अनाज, तो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रेनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी
0: जी,
1: उनका नाम था संदीप वांगा रेड्डी। उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा।
0: अच्छा।
1: मुकेश चावड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार
0: जी, जी।
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता
0: है।
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते हो।
0: हाँ, हाँ। बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था
1: जी,
0: इसमें सारे बड़े नाम
1: बहुत,
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सबके साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ।
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है।
0: हाँ,
1: अगर
0: हाँ।
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशियंट टाइम दिया है
0: जी,
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया। तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं
0: जी जी।
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था।
0: हाँ, हाँ।
1: हमारा शो उनका शो KBC और वो
0: जी, जी।
1: तो उन्हें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात करने का। तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर एक बहुत बड़ा
0: जी
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है। जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम, पहले एक मिनट बात करनी।
0: हाँ
1: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ हाँ
1: अरे क्या हो गया?

0: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
1: हाँ
0: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले।
1: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हाँ।
0: मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में,
1: हाँ।
0: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे।
1: ओहो
0: आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
1: क्या
0: हमेशा
1: बात, चलिए सुनते हैं।
0: हम

0: मुझे कोई मिलना प्यार कर से दे दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे दे फिर प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार दे दे हमें प्यार दे।
1: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे दे दे प्यार दे, और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
2: इस दौरान काफी फिल्में हुई, एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
1: हाँ हाँ,
2: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी, अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
1: जी,
2: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एक वर्ष से एक ही मेरी दूसरी फिल्म थी
1: जी।
2: फिर मैंने बागी 3 भी की जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
1: जी,
2: तो लाइट कॉमेडी फिल्म, तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्म में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक।
1: हाँ,
2: वो एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो की भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में
1: जी,
2: तो उसके साथ की थी, वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है, पहले सीजन में

0: थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने उस सत्या का करेक्टर
1: हाँ
0: किया,
1: हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब।
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शर्ट था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड़ से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर

0: अपन भी हम करने वाले थे।
1: हम्म,
0: तो सर को मैं बहुत मानता हूँ, लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी,
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि बिल्कुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा,
0: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक। मैं गया सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
1: अच्छा,
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जू चलो
1: अच्छा,
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी, फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मेरी मंजिल आ गई मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त बाद तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर? अरे
1: हाँ,
0: राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा,
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप तो राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ,
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। उन्होंने
1: अच्छा,
0: कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा,
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया, और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुए, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए,
1: अच्छा,
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं यार ये कौन है इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे,
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया कि
1: हाँ
0: ये डीएसपी राणा नाम के एक उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी,
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतना खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: या
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क विद हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है। टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है
1: हाँ,
0: आगे, और
1: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
0: डेडलाइन
1: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
0: होना ही,
1: जी
0: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है, और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
1: जी,
0: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
1: जी
0: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी,
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात है
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौसी, भारती आचरेकर
1: जी,
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
1: जी
0: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है,
1: बिल्कुल,
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा,
0: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था, बट ये कैरेक्टर बड़ा है अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद।
1: लगता है 2022 की बात है।
0: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले। तो
1: हाँ
0: ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है वो सोचता है अरे यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा,
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले। तो
1: बिल्कुल,
0: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है, पहले मैं जब आया था 2013 में ये ऑनलाइन वीडियो

0: बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल।
0: आज ऐसा हो गया कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो, ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा है वहां पे लाइन में खड़ा होना पड़ता,
1: दर दर भटकने वाली बात है।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, बोला नहीं सर पता करने आया, कुछ काम है। नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है। तो ये भी बहुत बार बहुत साल हुआ है मेरे साथ तो, लेकिन उसका अपना एक मजा था।
1: हाँ।
0: वो सफर है।
1: अच्छा।
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो। अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ, स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ।
1: हाँ।
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी तक समय होगा, पर जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो?
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला,
1: क्या बात,
0: और फिक्र को धुएं में उड़ाता।
1: हम दोनों फिल्म का गाना है।
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत,
0: बेहद लोकप्रिय,
1: आइए सुनते हैं।
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।

पर बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया।

मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया मुकद्दर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।

0: ना महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागली की दुनिया तक पहुंचे
2: जी।
1: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे। अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी हांसरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
2: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
1: जी,
2: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमिता ये करते हैं, सुमिता ये करेंगे, हाँ ये करें,
1: हाँ।
2: जैसे एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था
1: जी जी,
2: क्योंकि
1: आपने बड़े भाई का रोल,
2: मैंने उनके बड़े भाई का रोल किया,
1: मनोज वागले का नाम जी जी जी।
2: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ, सभी हम लोग सभी से सीनियर है, और फिर उसके बाद में जैसे एक्शन हो गया तो सुमिता की यहाँ से आवाज आती थी, अरे दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमिता क्योंकि 40+ years का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
2: फास्टर फेने वो शो किया करते थे 80s में शायद,
1: बिल्कुल।
2: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
1: आपको पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने,
2: अमेजिंग इट वाज।
1: मतलब
2: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी, तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था।
1: अच्छा,
2: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी। तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
1: अच्छा,
2: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है।
1: अच्छा,
2: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है।
1: ओके,
2: मेरा जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ हाँ,
2: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है और वो डर के चली जाती है, इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था, तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं,
1: बिल्कुल।
2: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं है
1: तो बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान है
2: जी जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं,
2: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो इसमें चला रहे कुछ
1: जी।
2: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमिता के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता
1: जी,
2: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूँ कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से, और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर
1: जी,
2: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां, इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा,
2: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जीडी सर से तू आया कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो, हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट आप रोज कर रहे हो चीजें तो हो जाती, लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरा और उनका सीन है वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे।
1: अच्छा,
2: खियर उपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं, वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइंस ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी,
2: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल
2: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा समझते अपन,
1: एक घूंट लेने की प्रक्रिया
2: वो है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
1: प्रयास करना
2: पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए। लेवल तो पहुंचने की बात नहीं करता, सो सीनियर।

0: एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार
1: जी जी,
0: उसी से फायदा होता है आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है
1: जी,
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है
1: जी।
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितना भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक दीपक पारिक, और उनके साथ ही करने में बड़ा मजा आता था, एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा। वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी जी,
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं अभी उसी सवाल पे आने वाला हूँ कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा,
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में सील पहुंची तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया, ये हमारा दोस्त है। तो लोग यकीन नहीं करते थे कि ये तरह रोज कहां से आएगा। नागपुर का तो नागपुर में होगा या ऐसा थोड़ी होता है। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा,
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ, हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहां पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा।
1: अच्छा,
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है।
1: अच्छा,
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा
1: अच्छा,
0: मैं बोला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है।
1: अच्छा,
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। अच्छा
1: जी जी,
0: मैंने बोला सर काम अच्छा करता है क्या? अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा अच्छा,
0: बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में, उनको बताया कि ये वही है। उन्होंने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या करोगे आप?
1: ये बिल्कुल रोमन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं
0: जी
1: कि कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते हैं।
0: ट्रू ट्रू
1: जी जी जी, तो ऐसा ही वाकया आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ,
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए,
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा।
1: हाँ,
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा, और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार।
1: क्या बात।
0: मैंने एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए, कि आर माधवन साहब की फिल्म थी राम जी लंदन वाले।
1: अच्छा, हाँ,
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें यूएस में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा,
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं।
1: अच्छा,
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो,
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पे सब दिया जाता है।
1: हाँ,
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है।
1: हाँ,
0: गाड़ी रहेगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं।
1: हाँ,
0: मैं अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ।
1: हाँ हाँ,
0: तो मजा तो वही है।
1: बिल्कुल,
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा लगे।
1: क्या बात
0: है, दैट इज मोर इंपोर्टेंट।
1: तो अब उन अपने लोगों के लिए जो नागपुर में बसते हैं, आपके दोस्त, आपके घर वाले, परिवार वाले, उनके लिए आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: वैसे अलग से तो बहुत सोचा नहीं, लेकिन देवानंद साहब का ये जो गाना था, है अपना दिल तो आवारा।
1: हो, आइए सुनते हैं।

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया।

अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में।

0: जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारत।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र भोरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती पर। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में हुआ था। उनके पिता पंडित है शिवाराम शास्त्री, मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गाँव के निवासी थे। ज्योतिर्विद महापंडित शिवाराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में बस गए थे। इसी के साथ ही छोटी शाही में गुलेरी ने अध्ययन और स्वाध्याय के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, मराठी आदि का भी नहीं जर्मन तथा फ्रेंच भाषा का ज्ञान हासिल किया। उनकी रुचि का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। वो धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और साहित्य के से लेकर संगीत, चित्रकला, लोककला, विज्ञान और राजनीति तथा सामसायिक सामाजिक स्थिति रीति रिवाज पर भी फैला हुआ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने कहानियाँ, लघु कथाएँ, आख्यान, ललित निबंध, गंभीर विषयों पर विवेचनाजनक निबंध, शोध पत्र, समीक्षाएँ, संपादकीय टिप्पणियाँ, पत्र टिप्पणियाँ, समकालीन साहित्य, समाज, राजनीति, धर्म विज्ञान, कला आदि के लेख लिखे। उनके लेखन की विशिष्टता और प्रशंसा के अतिरिक्त उनकी प्रस्तुति की अनोखी भूमिका में भी निहित होती थी। उस युग के कई अन्य निबंधकारों की तरह गुलेरी की लेखन में भी मस्ती तथा विनोद भाव एक अंतरधारा लगाकर प्रभावित होती रहती थी। धर्म, सिद्धांत, आध्यात्म आदि जैसे कई गंभीर विषयों को छोड़कर लगभग हर विषय के लेखन में वह विनोद भाव, प्रश्नों के चुनाव में, भाषा के मुहावरों में, उदाहरणों और उक्तियों में बराबर झंकृत करते थे। जहाँ आलोचना कुछ अधिक भेदक होती, वहाँ वह व्यंग में भी बदल जाता। जैसे शिक्षा, सामाजिक रूढ़ियाँ और राजनीतिक संबंधी लेखों में भी गुलेरी की रचनाएं कभी गुदगुद बजाकर और कभी झंझोक कर पाठकों की रुचि में बाधित करती रहती थी। साथ ही चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं यह संदेश।
1: चार थे पीएम जय, अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं लोगों के साथ समय बिताने।

दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जीवन की भाग दौड़ और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी सबसे कीमती रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। धन दौलत और सफलता जीवन के जरूरी है, लेकिन अपनों के साथ बिताया गया समय ही वही पूंजी है जो हमें आंतरिक शांति और खुशी देती है। कुछ लोगों के साथ सिर्फ वक्त बिताने से जीवन के कई बड़े तनाव दूर जाते हैं। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली में हर कोई तनाव में है। ऐसे में हम जब अपने परिवार, दोस्तों या जीवन साथी के साथ समय बिताते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अपनों के साथ की गई हंसी खुशी और बातें दिन भर की थकान हटा देती है। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास, प्रेम और जुड़ाव पर टिकी होती है। जब आप किसी व्यक्ति को अपना समय देते हैं तो आप उसे यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए कितना विशेष है। आज की पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि समय पर साथ देने वालों और समय देने वालों से होनी चाहिए। यह आपकी समझ और बढ़ाता है, रिश्तों को अटूट बनाता है। माता पिता का साथ बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। घर के बुजुर्गों को हमारे समय और ध्यान सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनके साथ बिताया गया समय उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता। आज के समय में तकनीकी और सोशल मीडिया ने हमें अपनों से दूर कर दिया है। लोग एक ही घर में रहकर भी फोन में रह सकते हैं। वास्तविक जुड़ाव के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनों के साथ समय बिताएं और डिजिटल उपकरणों से दूर बनाए। समय सबसे बलवान है और यह एक बार जीत जाए तो कभी वापस नहीं आता। जीवन के अंतिम क्षणों में हमारी सबसे बड़ी कमाई हमारे साथ बिताए गए रिश्ते और उनके साथ बिताए गए खूबसूरत यादें ही होती है। इसलिए सफलता के साथ साथ अपनों के लिए भी समय निकालना बेहद आवश्यक है। साथ ही उनकी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे। उससे पहले ही सुनते हैं यह गीत।

साथियों अभी हम सुने थे बॉर्डर से मेरे दुश्मन, जिसका हरिहरन और साथियों ने संगीत दिया है अनुमल की। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के संदेशों की प्रशिता पर। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के संदेशों और विचार आज के आधुनिक और अशांत विश्व में अत्यधिक प्रासंगिक है। उनका मूल मंत्र है उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त हो से लेकर मानव निर्माण और विश्व बंधुत्व की उनकी शिक्षाएं आज के युवाओं और समाज के लिए एक मजबूत मार्गदर्शक है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि शिक्षा केवल जानकारी जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। आज के भौतिकवाद युग में जब युवाओं में नैतिक मूल्यों और सहनशीलता की कमी देखी जा रही है, तब उनका चरित्र निर्माण का संदेश सबके अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। उन्होंने युवाओं को अपनी छुपी क्षमताओं को पहचानने और आत्मनिर्भर बनाने का पाठ पढ़ाया। उनका यह आह्वान भारत सरकार के आधुनिक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अभियानों के मूल रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सभी धर्मों की समानता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। वर्तमान समय भी जब धार्मिक कट्टरवाद और संघर्षों से जूझ रही है, यह संदेश शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए अचूक उपाय है। उन्होंने मनुष्य मनुष्य के बीच धर्म जाति या वर्ग के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है इसलिए सब समान है एक समतामूलक और सशक्त समाज के लिए निर्माण के लिए यह विचार आज भी अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी का मानना था कि दरिद्र भवो मूर्ख भवो अर्थात गरीबी और शोषित की सेवा की वास्तविक ईश्वर की ही पूजा है। यह विचार आज के समय में सामाजिक असमताओं को दूर करने और जल कल्याण के लिए युवाओं को प्रेरित करता है। साथ ही चर्चा को हम इसे तेजी रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं।

ठहरो मैं जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे

मैं जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

साथियों, अभी हम सुन रहे थे बॉर्डर से तो चलो रूपम राठौर और संगीत दिया है अनुमोदित ने। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के संदेशों की प्राचीन सत्ता पर। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और प्रेरणादायक विचारक थे। उन्होंने मानवता, आत्मविश्वास, शिक्षा, सेवा और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। उनके विचार केवल भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। आज का विश्व अनेक समस्याएं जैसे हिंसा, आतंकवाद, तनाव, भेदभाव, पर्यावरण संकट और नैतिक मूल्यों के पतन का सामना कर रहा है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद के विचार हमें सही दिशा दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वासी, कर्मठ और निडर बनाने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध संदेश, उठो जागो जब तक, मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, आज भी हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने शिक्षा को लेकर उसके ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम माना। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। उनका मानना था कि सभी मनुष्य सम्मान हैं और मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यदि समाज उनके विचारों को अपनाए तो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम किया जा सकता है तथा प्रेम, शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी जीवन में स्वामी विवेकानंद के विचार मानसिक शक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सहायक है। उनके आदर्श युवाओं को राष्ट्र विकास, समाज सेवा और नैतिक जीवन का भी प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। यदि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं तो एक शांतिपूर्ण, नैतिक और मानवतावादी समाज का निर्माण संभव है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं।

साथी में भी हम सुन रहे थे बाजी जैसे टाइटल सॉन्ग जैसे है कुमार सानू अलका याग्निक और संजय दे है अनुमल। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा जल संचयन का। दोस्तों जल ही जीवन है यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे और सभी जीवित प्राणियों के लिए जल अनिवार्य है। आज बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण औद्योगिकरण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट एवं गंभीर समस्या बन गया है। ऐसे समय में वर्षा जल संचयन जल संरक्षण का सबसे प्रभावी और आवश्यक उपाय है। वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि वर्षा के पानी को एकत्र करके भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखना। भारत में अधिकांश वर्षा केवल कुछ महीनों में होती है लेकिन वर्षा का बहुत बड़ा भाग बिना उपयोग के नदियों और समुद्र में बह जाता है। यदि इस जल को सही ढंग से संग्रहित किया गया तो वर्ष भर पानी की आवश्यकता पूरी हो सकती है। वर्षा जल संचयन से भूजल स्तर बढ़ता है, जल की कमी कम होती है और भविष्य के लिए भी पानी सुरक्षित रहता है। आज कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इससे पानी और सिंचाई दोनों की समस्या बनी रहती है। वर्षा जल संचयन इस समस्या का सरल और सस्ता समाधान है। वर्षा जल संचयन कई तरीकों से किया जा सकता है। घरों की छतों से वर्षा का पानी पाइपों द्वारा टैंकों में एकत्र किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग पीने, सफाई, बागवानी और अन्य घरेलू उपयोग में भी किया जाएगा। गाँव में तालाब बनाएं, कुएं, बावड़ियां और छोटे बांध बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। खेतों में छोटे छोटे गड्ढे और मेड़ बनाकर वर्षा के पानी को रोका जा सकता है जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है और फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है। वर्षा जल संचयन के अनेक लाभ हैं। इससे भूजल का स्तर बढ़ना और कुएं तथा हैंडपम्प लंबे समय तक पानी देते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। शहरों में जल संकट कम होता है और पानी की बर्बादी रुकती है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन से बाढ़ की समस्याएं भी कुछ हद तक कम होती है क्योंकि वर्षा का पानी सीधे सड़कों पर बहने के बजाय संग्रहित होता है। इससे मिट्टी कटाव भी कम होता है और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप बदल रहा है, कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संरक्षण पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। यदि आज हम जल को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हर घर, विद्यालय, कार्यालयों और उद्योग में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वह जल संरक्षण में अपना योगदान दे।

किया जा सकता है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्रत्येक बूंद का सम्मान करेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल संसाधन छोड़ेंगे। वास्तव में जल बचाओ जीवन बचाओ केवल एक नारा ही नहीं बल्कि हम सबका एक कर्तव्य है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

फेम से तो फिल्म दिल का क्या कसूर से दिल नजर जिगर जिसे है कुमार सानू ने संगीत दिया है नरेंद्र सरोन ने। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर। दोस्तों पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला हुआ वो तत्व है जो हमें वायु जल भूमि पर्वत नदियाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे शामिल हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे लिए सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। यदि हम आज पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण कम करेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दूसरों को भी जागरूक करेंगे। स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन और पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जैसे संदेशों को अपने जीवन में अपना कर हम धरती को सुरक्षित और सुंदर बना सकते हैं। साथ ही में अब समय हो चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र भौरव को आगे दीजिए। नमस्कार।

0: एक प्रकार से हाँ
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आज रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9 बजे। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे समाचार संध्या।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपनो राजस्थान। शाम 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:40 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से ही शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

राजस्थानी लोक संगीत आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। बेहतरीन फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी जैसलमेर केंद्र से। सुगम संगीत सुन सकते हैं आप रात्रि 8:30 पर। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे ख्याल वृंदावनी सारंग, ठुमरी मिश्रकाली, पंडित भीमसेन जोशी की प्रस्तुति।

शाम 7 बजे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन सकते हैं, किसान वाणी। आज का किसान वाणी कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हम आपको डॉक्टर चारू शर्मा किसान विकास केंद्र जैसलमेर से फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा शाम 6:15, और अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान, एपिसोड संख्या 119।
1: एपिसोड नंबर 119 119।

अवध के निकटवर्ती प्रदेशों तथा भारत के कतिपय अन्य भागों में विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद दुल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाए जाने का विधान प्रचलित है, जहां कुल देवता की पूजा की जाती है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोकाचार का गान किया गया है। उधर सुहागिनी स्त्रियां कुंवर और कुमारियों को कोहबर में ले आती हैं, जहां कुल देवता की पूजा अर्चना में मंगल गान के साथ लौकिक रीतियां संपन्न हो रही हैं। यहां पर वर वधु एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाते हैं, जिसे लहकौर कहा जाता है। सुहागिनों के रूप में उपस्थित पार्वती श्री राम को तथा सरस्वती सीता को लहकौर सिखा रही हैं।

ये दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान, ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: जियो रामा भोला न राह दिखाओ जी, महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी,
1: हमारी सभा में रंग बरसाओ जी, हमारी सभा में रंग बरसाओ जी, हमारी सभा
0: महाराज गजानंद आओ जी, मारी सभा में रंग बरसाओ जी, महाराज।

भूत पिशाच निशाचर मारे प्राण बचावे बालाजी, प्राण बचावे बालाजी, मारा प्राण बचावे बालाजी। सतयुग से इस कलयुग में।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले दो दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। इस दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मिले। उन्होंने जनहित परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं के विस्तार पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। श्री शर्मा ने कृषि मंत्रालय में आयोजित अहम बैठक में भी हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने VBG रामजी लागू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया।
2: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक विकास का था, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उसको कर सकते हैं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने ग्राम चौपाल पहल की भी सराहना की। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र RC नवीनीकरण की देरी पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि कृषि कार्य में लिए जा रहे ट्रैक्टरों से RC रिन्यूअल में एक साल की देरी होने पर ₹500 माहवार की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹2500 निर्धारित की गई है। गैर परिवहन दुपहिया वाहनों के RC नवीनीकरण में देरी होने पर ₹300 महीने की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹1000 तय की गई है। ये विशेष राहत इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। मॉनसून आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में और आगे बढ़ा है। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर से होकर गुजर रही है। इसके अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के भागों में आगे बढ़ने के आसार हैं। इससे जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले दो तीन दिन गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में झमाझम बरसात का अलर्ट है। इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की मध्यम बरसात का ये सिलसिला अभी बना रहेगा। हालांकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। आज डूंगरपुर के गलियाकोट, सागवाड़ा और निठाउवा में कभी तेज तो कभी हल्की बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा बीती रात लुनखंदा गांव में हुआ, जहां एक ही परिवार के लोग फसल की रखवाली के लिए खेत पर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इन्हें कनेरा CHC लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। मॉनसून के दौरान बिजली जनित हादसों की रोकथाम के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उधर पाली में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ऑयल बॉयल्स बनाई गई हैं। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि एंटी लार्वा के लिए ये बॉल्स काफी कारगर हैं।
3: ऑयल बॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या 2 या 4 घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हो। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है। जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
1: जयपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना श्यामनगर क्षेत्र में 200 फीट बाईपास पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उधर पाली जिले में नेशनल हाईवे 162 पर मोड़ भट्टा इलाके में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने केलावा खुर्द में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज पूरी दुनिया शांति संतुलन के लिए भारत की ओर आशा से देख रही है। ऐसे में हमें सनातन संस्कृति को मार्गदर्शन का आधार रखना चाहिए।
4: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने समुद्र की दूरी को दोनों देशों के बीच का सेतु बताया। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद की नीति में विश्वास रखता है।
5: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल, मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।
1: श्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए हर्ष और गौरव का विषय बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने

0: टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
1: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हों।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि डूरंड कप देश की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति भवन में ट्रॉफियों का अनावरण टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक हासिल किए। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा। वहीं पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर परिषद सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, पंचायती राज और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नामांतरण, सीमा ज्ञान, प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जाँच, पशु चिकित्सा और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने बताया कि ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पिछले दिनों जिले में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य स्थानों पर 1154 बूथ बनाए गए। पहले दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई। अभियान के दौरान जिले में 3,65,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। आकोली ग्राम पंचायत में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया गया। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम शाह पूंजाजी गेनाजी खेल स्टेडियम में हुआ। सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद विभाग के अनुसार जिले में 73,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। कृषि विभाग की ओर से तीखी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यशाला रखी गई। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जांच और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने के साथ ही प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग की टीमें घर घर जाकर 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चला रही है। अभिभावकों से सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आहोर ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा बैठक पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पेयजल तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिले में पिछले दिनों रोजगार उत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 506 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सहकारिता सप्ताह के तहत जिले में ग्रीन कोऑपरेटिव दिवस मनाया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों की चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस योजना में 519 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा और 64 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले में जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति और जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। उधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दुर्घटना संभावित स्थानों पर संकेतक लगाने, आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जिले में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। जालौर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा, सायला, बागोड़ा और सांचौर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों ने मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की बुआई शुरू कर दी है। तालाबों और एनीकटों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रहा। दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश का विकास में जुड़िया खास मुद्दा में से चर्चा की। राजरा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा। आवता 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे भारी बारिश सारू चेताई चियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान नवाजी चिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफिया रो अनावरण कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली माए न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। वे उपभोक्ता मामलात, खाद्य और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सागे भेंट रहे दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने असरदार तरीका लागू करण और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मत चर्चा कीनी। श्री शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिलिया। वे आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मिलर प्रदेश माए ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवावां ने बधावन रे बारा माए बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुई मिलिया। श्री शर्मा कृषि मंत्रालय माए राखी जी खास मीटिंग माए शामिल थिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मुख्यमंत्री कहो के इन दौरान राज्य रा खेती बाड़ी हलकाओं जुड़िया मुद्दा हर योजनावां रा बारा माए चर्चा करी ची। वे VBG रामजी लागू करण सारू कृषि मंत्री रो आभार जतायो।
3: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक विकास का था, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
2: इस मौके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज

0: मुणपना 500 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 2500 रुपया भेला। गैर परिवहन स्कूटर मोटरसाइकिल री आरसी नवीनीकरण माए मोड़ो भेवणपना 300 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 1000 रुपया भेला। आ राहत ई साल 30 सितंबर ताई मिलेला। प्रदेश रा लंकाओ आतुणी हल्का माए चौमासा री बिरखा भेवण लगी है। फिलहाल मानसून री उत्तरी रेखा बाड़मेर अरजूत पूर्व वेती निकल रही है। इनरे आवता दो दिन माए बीकानेर संभाग और आरएसआर रा हल्का माए आगे बढ़वार आसार है। इनो जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हल्का माए आवता दो तीन दिन गरज सागे हल्की बारिश रा आसार है। उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला माए बारिश सारू चेताईचियो है। ये बीजे राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब 10 जुलाई बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। आज डूंगरपुर रा गलियाकोट सागवाड़ा और निठाउआ माए में बरसबा रा समाचार है। ये बीचे चित्तौड़गढ़ जिला रा कनेरा हल्का रा लुणखंदा गांव माए बीती रात बिजली पड़ जावण तीन जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा ए लोग साखा री निगरानी सारू खेत माए सूता हा। पुलिस माना कनेरा सीएचसी लेगी जठे डॉक्टर मारी मौत रो ऐलान कर दिनो। चौमासा माए बिजली पड़बार कारण हादसा री शंका न ध्यान रखता थका अजमेर विद्युत वितरण निगम जनताओं सावचेती राखण री अरज कीनी है। तेज आंधी और बारिश रे दौरान बिजली रा खंभा ट्रांसफार्मर और बिजली री लेणाओ दूर रेवण री राय दीरी जी है। ई विचे पाली माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू चिकित्सा विभाग तेल री गोलियां बनाई है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि मच्छर पनपाऊ रोकण माए ओ जुगाड़ घणो काम रो है।
1: ऑयल वॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या दो या चार घंटे तक उसको जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉयल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है, जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी है और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
0: जयपुर रा श्याम नगर हल्का माए 200 फीट बाईपास कने आज तेज यूं जा रही एक ट्रक फुटपाथ माथे उबा 5 जना न गचर दीना। हादसा माए 3 बच्चा री मौके ही मौत फेगी जबकि 2 जना घना जख्मी फेंक्या। पुलिस मामला री जांच कर रही है। पाली जिला माए नेशनल हाईवे नंबर 162 माथे मोड़ भट्टा हल्का माए एक तेज रफ्तार कार रे डिवाइडर उ टकरा जावण रे कारण कार में सवार 5 जना जख्मी हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर करना के अलावा खुर्द में राखी जिया धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भया और जनसभा ने संबोधित कीना। इस मौके वे कहो कि मानवीय मूल्यां ने विचार व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि आखी दुनिया शांति और संतुलन सारू भरत ओड़ी उम्मीद री निजरू देख रही है और माने सनातन संस्कृति ने मार्गदर्शन री बुनियाद बनावनी चाहिए।
2: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहा। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीच आज इंडोनेशिया री राजधानी जकार्ता में बातचीत हुई। इन दौरान दोनों देशों बीच रणनीतिक भागीदारी ने मजबूत बनावण रे बारे में चर्चा करी जी। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, खेतीबाड़ी और नवी प्रौद्योगिकी समेत न्यारा न्यारा हल्का में भांत भांत रा करार माथे सही करी जी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया री संसद नई संबोधित की ना।

0: वारा भाषण में श्री मोदी समुद्र री दूरी ने दुनिया दिशा बीच रो पुल बतायो। भारत और इंडोनेशिया बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रो जिक्र करता थका प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद रे खिलाफ एका माथे जोर दिनो। वे कहो के भारत विस्तारवाद रे बजाय विकासवाद री नीति माय भरोसो करे है।
1: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सदस्यों के बीच आया।
0: इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी ने बधाई देता थका इन्होंने भारत रा हर रहवासी सारू माथो ऊंचो करण री बात बताई। वे कहो के ओ इनाम दुनिया माए भारत रा बधता मान और भरोसा री निशानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन रा सांस्कृतिक केंद्र माए डूरंड कप फुटबॉल 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट री ट्रॉफी ने न्यारी न्यारी ठौड़ घुमावण रा कार्यक्रम री आधिकारिक शुरुआत फेंकी। ये मौके राष्ट्रपति टूर्नामेंट माए शिरकत करण वाली सगली टीम और खिलाड़ियों ने शुभकामनावां दीनी। श्रीमती मुर्मू खिलाड़ियों खेल भावना राखता थका बेहतरीन खेल रो दर्शाव करण सारू कहो।
2: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मौजूद था। ध्यान योग है कि डूरंड कप देश की मान्योड़ी और ऐतिहासिक फुटबॉल होड़ है। थाईलैंड रा पटाया माए भी 20 सालों कम उम्र रा खिलाड़ियां री एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप माए भारत रा पहलवान सोना रा 4, चांदी रा 7 और कांसा रा 9 तमगा जीतिया। महिला वर्ग में भारत 184 अंक लेर उप विजेता रही, जबकि पुरुषों रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत री टीम 152 अंक कांसा गए तीजी थौड़ माथे रही। दूजी क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच 5 T20 मुकाबला री सीरीज रो तीजो मैच आज रात नॉटिंगहम में खेलो जावेला और मैच भारत रा समय रे मुजब रात 10 बजे शुरू भेला। केंद्र सरकार चीन री फौज रे भारत में 60 किलोमीटर अंदर ताई घुस जावन रो दावो करण वाला सोशल मीडिया में से चल रहा वीडियो ने गलत बतायो है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई इन्हें फर्जी बतायो है। इकाई ई वीडियो ने भरमावन वालों बताता था का कहो का इनरो भारत चीन सरहदों कोई लेनो देनो नहीं है। आखिर में खास समाचार एक बार फिर सुन ले रहा हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रा दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश रा विकास से जुड़िया खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। प्रदेश रा घनखर हल्का माए चौमासा री बिरखा, आवता दो दिन उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे भारी बारिश सारू चेताई छियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझौता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान नवाजी चिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा टूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हर जोखिम से
7: तो देखो मैडम, आज मंगलवार है, फोन इन कार्यक्रम आप अध्यक्ष है डॉक्टर चरणजीत शर्मा, आप ये से बातचीत कर सक। और महिला जो को कृषक बहनों है वो वास्ते अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष है, तो ये माथा आप विशेष चर्चा कर सो। और जो को भी महिला बहनों सुन रहे हैं, कृषक भाई सुन रहा है, तो आज जो को फोन इन कार्यक्रम है, मेरा दूरभाष नंबर हो आप नो बता दो, तो और ये माथे कोई थोड़ो सवाल हुए या जवाब हुए तो पूछ सको। ये बात आप दूरभाष नंबर है 02992254202, ये माथे सीधी बात कर और आप कोई भी सवाल जवाब पूछ सको। तो चारू जी, पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद।
7: देखो के आज आप बातचीत करो तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष है, ये माथे बातचीत करो तो आज जो को समय है ये में महिलाओं जो को मोरे है, विशेष तो आप बात कर सो तो किसान महिला बहनों माथे कर सो, फिर भी अगर आप बात करो तो हर क्षेत्र में बहुत ही आगे कह सको के आदि बराबर कंधे से कंधे मिलाए चल रहे। और आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हो, तो मोरे जो को महिला बहनों है वास्ते आप जो को विभाग है वो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष वास्ते की बढ़िया चीज ले बैठा है, ताकि मोरे बहनों सुने बने आवे और लाभ ले।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस मंच पे बोलने का आपने अवसर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष, देखिए जब हम एक किसान का चित्र अगर अपने मन में खींचते हैं, अगर मैं किसी बालक को बोलूं, किसी भी व्यक्ति को बोलूं, तो वो एक पगड़ी बांधा हुआ, हल बांधा हुआ एक किसान का फोटो बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष ये अपेक्षा रख रहा है, इस सोच के साथ संयुक्त राष्ट्र ने जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मंच है उसने इसको वर्ष के रूप में मनाने के लिए इसलिए सोचा कि महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए तो बहुत प्रयास होते हैं, उन्हें मान्यता भी दी जाती है, उन्हें ये कहा जाता है कि आप पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं, बताया जाता है, जताया भी जाता है, हक भी दिया जाता है, लेकिन उसके साथ में कार्रवाई क्या चलती है। तो जो मैं कह रही थी कि एक किसान का चित्र जब खींचते हैं तो एक पुरुष की छवि, एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने मन में खींचता है, तो महिला एक कृषक के तौर पर है ये किसी को नजर इतना आसानी से दिखाई नहीं देती। एक तरीके से कह लो कृषि की ये अदृश्य रीढ़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है कृषि में। लगभग आधा हिस्सा, आधी संख्या में हमारी महिलाएं कृषक के रूप में खेती में योगदान दे रही हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि महिलाओं की इस अदृश्य रीढ़ को पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे देश में

0: ये बताने की जरूरत है कि सिर्फ हम इनको 33% हक ना दें, हमें ये ना बताएं कि इन्हें नौकरियों में बराबरी दी जाए, इन्हें पुरुषों के बराबर चलाया जाए, जबकि इन्हें उन स्तरों पे भी पहुंचाया जाए जहां लाभ के अवसर जितने पुरुषों को मिलते हैं उतने महिलाओं को भी मिले। और कृषि में लाभ के अवसर महिलाओं को कैसे मिलेंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर मैं यहाँ एक बात और अंत में कहूंगी कि जब भी हम कोई वर्ष मनाते हैं ना, वो मनाने की आवश्यकता या तो वो त्योहार होता है तो मनाते हैं, या जिस बिंदु पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रखा जाता है, मतलब इस और पूरे समाज को सोचने की जरूरत है, इसलिए इसे मनाया जा रहा है।
1: बहुत ही बढ़िया जरूर जी, देखो के जो भी सरकार सोचे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर माथे कोई भी चीज में अगर ज्यादा गहनता से लिए जाओ तो मेरा बहुत ही मोटा बढ़िया परिणाम हो। और आप की जगह बैठा हो, देखो जाओ तो आप देश में आप एक खुले माथे बैठा हो और शिक्षा के क्षेत्र में भी हाल तक कहीं ना कहीं आप ला रहे हो, क्योंकि देखे जाओ तो पढ़ाई स्तर तो बढ़े हुए फिर भी हाल तक देखो किसानों में थे देखो या आप और महिलाओं में देखा तो बहुत ही ला रहे हैं। तो आज यदि आप बात कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष की, तो ये महीनों महिलाओं की साक्षरता सो कितो लाभ मिल सके।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि बिल्कुल शिक्षा जो है वो क्रांति लाती है, सोच बदल देती है, और पढ़ाई शिक्षा कहीं ना कहीं महिलाओं को उस स्तर पे ले जाने के लिए एक दिशा ही देगी। सिर्फ साक्षरों के लिखना पढ़ना ही काफी नहीं होता, कृषि में जानकारी और उस जानकारी का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और शिक्षा ये सही और गलत की सोच पैदा करती है कि किस चीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, निर्णय लेने की क्षमता देती है। और जब तक हम निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं करेंगे तब तक महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल पाएगा। वो चाहे आप, मैं कह लूं कि हम महिलाओं को भूमि में स्वामित्व तो देते हैं, कहाँ देते हैं, जहां हमें भूमि लेनी होती है तो चलिए महिला के नाम का पट्टा करवा लेते हैं, सरकारी योजना में लाभ आजकल महिलाओं से सृजित करके दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। लेकिन ये एक है ना दर्शाने के लिए हो गया है कि महिला के नाम का होगा तो योजना में लाभ जल्दी मिलेगा, बजाय इसके हमारे समाज को या इनफैक्ट हमारी जो कृषक महिलाएं हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो ऊपरी स्तर पे जो हमें काम करना है, छोटे छोटे काम, शिक्षा, शिक्षा को कैसे इस्तेमाल करना है, कि हमें छोटे छोटे बैंक के काम आने चाहिए, हमें खेती में क्या योजनाएं आ रही उसके बारे में पुरुषों के बराबर पता होना चाहिए, हमारे लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारी खेती में मदद कर सकती हैं उसके लिए काम करना चाहिए, और खेती को हम कैसे उद्यम बनाएं इस और सोचने के लिए उनको शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पढ़ के स्कूली शिक्षा के माध्यम से करें, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के तौर पर आप कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसमें जोड़ सकते हैं, जो जिला स्तर पर महिलाओं के ज्ञान संवर्धन, कौशल संवर्धन, उनकी हुनर को बढ़ाने, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए काम करता है। महिला कृषकों को यहाँ जुड़ना चाहिए और अपने इस लाभ को उठाना चाहिए जो उनके उनकी बेहतरी उन्नति के लिए सरकार ने बनाया है।
1: बहुत बढ़िया बात आप किसान महिला बहनों ने बता रहे हैं, और जो को भी सुन रहे हैं वो भी आप एक ही बात कह सो, आज चारू जी से कोई आप सवाल जवाब हुए तो आप फोन इन कार्यक्रम में कर सके, और कोई भी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित कोई भी जो महिलाओं के वास्ते काम करे या पर कृषि विज्ञान केंद्र मेरी जानकारी हासिल कर ले सके, प्राप्त कर सके। देखो चारू जी के कृषि विज्ञान केंद्र भी आप अगर बात करो और महिलाओं की बात करो तो समय समय माथे थोड़े थे नवाचार वास्ते मोहरे महिला किसान बहनों होते रहे, तो आज जो कुछ में है अर्थ हुआ तो शिक्षा की बात करी मेरे साथ साथ में, देखो अर्थ है माथे सब चीजें, और देखो तो खेत में सबसे ज्यादा काम महिलाओं को करी है, तो पूरे दिन ढोड़ी में बैठे रहे तो कहीं कहीं गाय रुकी हो, कहीं खेत रुकी हो, कहीं की हो, मतलब देखे जाओ तो मोरू शरीर चलते रहे, आज भी तो ठीक है खेतों काम मिलती हो शरीर जाओ। तो कृषि विज्ञान केंद्र मोहर महिलाओं रो आर्थिक स्तर सुधरे, और वो आप जगह जगह बात रे रहे जहाँ आप बात करो तो परंपरागत वनस्पति है या और भी कई महिला समूह या जो को भी है, उनमें मोरू जो को बहनों है वो और वास्ते कृषि विज्ञान केंद्र आप विभाग की मदद करया कर।
0: अर्थ युग से यहाँ महिलाओं को बताना चाहूंगी कि अर्थ मतलब

0: एक भाषा में पर्यायवाची है पूंजी का, धन का। और धन के इस युग में महिलाएं, अगर मैं कहूं तो एक नैसर्गिक गुण होता है उनमें धन को संजोने का, उसके प्रबंधन का। उन्हें कोई बचपन से ही कोई सिखाया नहीं जाता, फिर भी वो सीख जाती हैं कि 1000 में घर कैसे चलाना है या 5000 में घर कैसे चलाना है। और यही बात मैं अगर खेती में करूं तो कृषि में भी वो बहुत अच्छी प्रबंधन होती हैं। अगर फसल कटकर आ रही है तो उसे अपने पति से ज़्यादा चिंता है कि उसे कहाँ भंडारण करना है, कहाँ उसको कैसे उपयोग लेना है, उसके चारे का उपयोग कैसे करना है, उसके अंतिम स्तर तक उसका कैसे संभाल करनी है। महिलाएं इसमें काफ़ी सजग हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के लिए एक स्कूल है, किस महिलाओं के लिए नहीं, कृषकों के लिए एक स्कूल है, चाहे वो पुरुष हों, चाहे महिला हों, चाहे यूथ हो, किसी के लिए भी वो खुला है। और महिला कृषकों को यहाँ ज्ञान और कौशल देने के लिए हम बहुत सारे प्रशिक्षण करवाते हैं। प्रशिक्षण में हम खास तौर पे महिलाओं को खेती करना नहीं, खेती के बाद का स्तर प्रसंस्करण, जिससे खेती को हम सेकंड, हम ऊपर एक नई सीढ़ी पे ले जा सकते हैं। इस और हमारे देश में काम काफ़ी हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं थार, हमारा जो जैसलमेर है, उसके परिदृश्य में ये बात कहना चाहूँगी और महिलाओं से को का आह्वान करूंगी इस मंच से कि वो इस और सोचें कि प्रसंस्करण यानी मूल्य संवर्धन, खेती में जो भी हम उगा रहे हैं, हम उपज ले रहे हैं, उसको हम कैसे दो गुने दाम लें, इस और सोचें, उसके उत्पाद बनाएं, उसका मूल्य बढ़ाने के लिए उसका रूप बदलें, चाहे वो गेहूं से उसका मैदा बनाएं, चाहे सूजी बनाएं, आटा बनाएं, चाहे उसके बिस्किट बनाएं। लेकिन आपको ये हुनर सिखाने में पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम समय लगेगा, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। आप यहाँ बिना निशुल्क, बिना किसी फीस के इस तरीके का प्रशिक्षण ले सकती हैं, अपना उद्यम स्टार्ट कर सकती हैं। देखिए, हम बहुत बड़ी शुरुआत नहीं करें, लेकिन छोटी शुरुआत भी अगर हम अपने ज़िले से करेंगे तो हम अपने ज़िले की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित कर पाएंगे, जिसमें हम राजस्थान के अन्य ज़िलों से अभी काफ़ी पीछे हैं।
1: देखो चलो जी, आप बात करो अर्थ दौर है, अर्थ दौर में कई प्रकार छोटा छोटा जो उद्योग है मोरे महिला किसान बहनों को में कर रहे हैं। और मैं एड़ो समय समय माथे आप रहे था उन्होंने बाद सुन में भी आई कि ये जो को व्यवसाय नो महिलाओं गति दे रही उनसे बाजार भी दे रहा है, तो उन्होंने बाजार कोकर दे रहा हूँ। तो कई महिलाओं तो मोरे जो को समय समय माथे जुड़ते रहे, कई वो दूर दराज बैठे वो अपनी बात आज ये मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो भी अगर थोड़े मतलब उत्सुक है तो थोड़ा वो ना जाओ वरी कोई चीज है वो करने, कोई कला है या वो कोई भी खाद्यान्न है या कुछ भी चीज है, उन्हें थोड़ा कोकर बाजार तक कोकर ले जाओ लोग माध्यम बताओ।
0: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो मैंने अभी पहले भी अपने प्रत्युत्तर में पिछली बार कहा था कि हम उपज को तो बनाएं उत्पाद के रूप में, लेकिन असली काम वहाँ शुरू होता है जब उस उत्पाद को या जो भी हम मूल्य संवर्धित करके बना रहे हैं उसका रूप बदल करके उसको हम बाजार तक कैसे पहुँचाएं। ये बाजार जो है ना, दिमाग में ही बाजार वर्ड हमारे ऐसा घूम जाता है कि महिला कृषक अपना पैर अपने गांव से, अपनी ढाणी से उठा नहीं पाती। उसके सामने ये प्रश्न चिन्ह पहले ही लग जाता है कि अगर मैंने सिलाई सीख भी ली तो मैं अपनी दुकानदारी को बाजार तक कैसे ले जाऊँगी, मैं अपने सामान को बाजार तक कैसे पहुँचूंगी, मैं घर घर जाके कैसे बेचूंगी। तो यहाँ दो बातें आपको समझनी होगी महिला बहनों, महिला किसान बहनों, कि हमें ज़रूरत नहीं आज के इस डिजिटल युग में कि हम बाजार के लिए घर घर जाएं। हम डिजिटल जो क्रांति आई हमारे देश में उसके माध्यम से भी हम ले जा सकते हैं। इस पे भी कृषि विज्ञान केंद्र आपको विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बाजारीकरण करना है अपने उत्पाद का, इस पर पूरा प्रशिक्षण देती है। चाहे वो हमारे फ़ोन के बाजार हों, रील बनाकर हमारी बहुत सारी जो युवा उद्यमी हैं वो टिकटॉक के माध्यम से भी रील्स बनाकर अपना उत्पाद बेच रही हैं। कैसे आप है ना इस डिजिटल युग में अपने उत्पाद को एक हाईलाइट दे करके, लोग तो इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं, तो हम अगर अपना ऐसा हुनर रखते हैं, चाहे वो कशीदा कला में हो, चाहे वो खेती में हो, या मैं कहूँ यहाँ का जो भी पारंपरिक ज्ञान इन महिलाओं के पास है, चाहे वो तुम्बे को कैसे हमें अवेरना है या कैर को हमें कैसे अवेरना है, जो कि बाहरी लोगों को नहीं पता, और बाजार में ऐसी ऐसी बात नहीं है, बाजार में भी मांग सिर्फ फैक्ट्रीज पूरी नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं इंसानी श्रम भी लगता है, और अगर वो घर का हाथ का बना हुआ हो तो उसके दाम कहीं ना कहीं बाजार में बहुत मांग रहती है। तो महिलाओं को दो तरीके से इसमें पहुंचना है, एक तो आपको बाजार में पहुंच बनाने के लिए उन संस्थाओं से जुड़ना है जिसमें केवीके एक फर्स्ट आपकी सीढ़ी बन सकता है जो आपको इन संस्थाओं से जोड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे जैसे राजीविका हमारे जिले में कार्य कर रहा है जो कि लखपति दीदी के माध्यम से आपको मेलों में वो अवसर देता है, आपको प्लेटफॉर्म्स देता है। इसके अलावा नियाम है, नाबार्ड है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको इस इन बाजारों तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकती है, आपका इस पर कौशल संवर्धन ये कला आपको सिखा सकती है। ये भी एक कला है, एक हुनर है कि आप कैसे अपने उत्पाद को बाजार तक ले जाओगे। और यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र खुद अपने आप में एक बाजार स्थापित करता जा रहा है आपके जिले में, और बहुत जल्दी ही महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को पहुंचाने में बहुत आगे नहीं जाना पड़ेगा। केवीके पहली खिड़की बनेगा और आपके उत्पादों को जिले के साथ साथ बाहरी लोगों तक भी पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है महिला बहनों सुन रहे हैं बड़ी उत्सुकता से, गौर मिलो तो भी कुछ महिलाओं है वो ही थोड़े पावे या जीत भी जावे उस लाभ प्राप्त कर सके। आप तो बहुत मोटो भूभाग है, खेत बहुत मोटो है, तो जो को भी सुन रहे हैं वो हमें उत्सुकता है। तो अपना प्रधानमंत्री जी भी ये वास्ते बहुत अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहा है, जहाँ ड्रोन दीदी कर रहा है, कभी की कर रहा है। तो अब बात करो कि भाई ड्रोन दीदी, तो कुछ महिलाओं तो है वो सजग है, कौकर है कि वो सब जा, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें वो हमारे जो महिला है वो दिमाग में कहीं कहीं चलते रहे, ड्रोन की हुई दीदी की हुई, क्योंकि बहुत मोटो क्षेत्रफल है। आप तो ईर बारे में अगर मोरे बहनों जो कुछ सुन रहे हैं कि भाई ये में भी एक आज उस समय जो था बात करी गए, आज उस जो समय है कोई रील बनाई कोई की बनाई, तो मोबाइल ज़्यादा समय न चलाना आवे, तो मोरी बहन ड्रोन भी चला सके। तो ये ड्रोन की है, कुछ बहनों तो कुछ चला रहे वो तो मैं ठीक है, वही जानकारी वहाँ तक पुगेगी नहीं पुगेगी, आज आप बातचीत कर रहे हो तो अगर अपर माध्यम से वहाँ तक ये बात पहुँच जाए तो ड्रोन में अगर कोई दीदी मोबाइल बननी चाहे तो कौकर कौकर ही लाभ ले सकते।
0: भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और स्पेशली जो महिला कृषक हैं उनको बढ़ाने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और भी बहुत सारी दीदियां आजकल गठित कर दी गई हैं। मैं बताना चाहूंगी महिला कृषकों को कि ड्रोन दीदी कोई बहुत ऐसा कार्य नहीं है जो कोई भी महिला नहीं कर सकती। जैसे अगर मैं कहूँ कि ट्रैक्टर चलाना जो कि शायद हर महिला को नहीं आता होगा, उसके घर में तो होगा लेकिन ट्रैक्टर पे वो चढ़ी नहीं होगी ये सोचकर कि ये पुरुष के ही हाथ से चलाया जा सकता है, महिलाओं का ये कार्य नहीं होता। तो पहली सोच तो आपको ये तोड़नी है कि ड्रोन एक सिर्फ मशीन है जिसको चलाना सीखना होता है। इसका कार्य जो खेती में अपनी जो फसलें होती हैं इसमें उचित जो भी आपको उर्वरक या दवाइयों का छिड़काव करना है तो वो करने के लिए बैटरी से चलने वाली हाथ की मशीन की बजाय एक उड़ने वाली मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसमें एक फ़ोन की तरह ही रिमोट कंट्रोल रहता है और महिला उसमें देखते हुए आप छिड़काव कर सकते हो उन मशीनों के द्वारा। अब यहाँ महिलाओं को झिझक होती है, तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब आपने पहली पहली रोटी बनाना अपनी माँ की रसोई में सीखा होगा तो वहाँ एक झिझक थी, आपने श्रीलंका का नक्शा बनाया होगा, आपने पाकिस्तान का बनाया होगा, भारत का भी बनाया होगा, लेकिन जैसे जैसे आपने वो रोज अभ्यास किया तो वो रोटी गोल बनने लगी। तो उस ड्रोन की मशीन को लेकर आप कोई बहुत बड़ा अपने मन में प्रश्न ना रखें, आप संपर्क करें अपने नज़दीकी कृषि विभाग में या संस्थान में, या आप हमारे केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं, या आप अपने ग्राम के जो सुपरवाइजर हैं उनसे उनके थ्रू भी हमारे तक पहुंच सकती हैं, तो उसका उचित प्रशिक्षण आपको दिलाया जा सकता है। ड्रोन दीदी एक तरीके से आपके खेती हर कार्यों को करने वाली वो दीदी, वो सरपंच बनेगी जो कि उस कार्य को आपके हर खेत तक, गांव के हर खेत तक पहुंचाने का काम करेगी। और यूं कह लो ना कि सरपंच क्या करता है, अपने गांव की देखभाल करता है, अपने गांव के विकास का काम करता है, तो ड्रोन दीदी या लखपति दीदी अपने गांव की मॉडल महिला होगी जो कि उस कार्य को करेगी। और ये कोई बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ कि क्या आपको किसी ने फोन में, जो आजकल आप डिजिटल फोन अपने व्हाट्सएप चला लेती हैं महिलाएं, ये किसी ने सिखाया था क्या? पहले पहले सिखाया होगा, बहुत झिझक लगी होगी, लेकिन उस बटन दबाने वाले फोन से आपके मन में भी उत्सुकता जागी कि मैं उंगली से चलाने वाला फोन चलाऊं। तो ड्रोन में भी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा तकनीकी ज्ञान है, अगर वो चाहें तो सीख सकती हैं।
1: बिल्कुल, मोरे जो को भी महिला बहनों सुन रहे हैं और मोरी रुचि जागृत हो रही है, और अगर ठोस से संपर्क करना चाहो, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करना चाहो, तो आज जो कोई माध्यम है, हर बैंक के अंदर मोबाइल है और आजकल व्हाट्सएप बीजा ग्रुप बीजा है, तो वो ठोस अगर संपर्क करना चाहो, यानी थोड़े विभाग से।

0: को कर सके की तरह।
1: देखिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र के बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर 8696711107 पर संपर्क करके, मेरा नाम डॉक्टर चारू शर्मा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं के लिए खास तौर पर कार्य करने वाली वैज्ञानिक हूँ। मैं महिला संबंधी जो भी उन्नत नवाचार तकनीकें, जो भी नई जानकारी तकनीकें, मशीनें, जो जो कुछ भी आ रहा है उसमें आप महिला किसानों के लिए सहायता करने के लिए आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने महिलाओं के व्हाट्सएप ग्रुप को एक अलग स्थान दे रखा है जिसमें कोई पुरुष नहीं है, ताकि महिलाएं बेहिचक उसमें अपनी जानकारी साझा करती हैं, अपने अपने गृह वाटिका, अपनी बगीचे में लगाई फल फूल सब्जियों के बारे में जानकारी लेती हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या उत्पाद बना रही हैं उसके बारे में जानकारी लेती हैं। आप एक बार अगर केंद्र पर आकर संपर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि वो संपर्क हमेशा के लिए बन जाएगा और बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर आप हमें बताएंगी तो हम आपके गांव भी आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ताली दोनों तरफ से बजती है, तो एक बार अगर आप बजा के देखेंगे, क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जो कि भारत में बड़े बड़े जिलों में काउंट होता है, तो शायद मैं एक अकेली हर महिला तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन अगर आप एक बार भी अगर संपर्क करने का प्रयास करेंगे किसी भी माध्यम से, चाहे आप केंद्र पर आकर मिलें, चाहे आप फोन के माध्यम से करें, या कृषि विज्ञान केंद्र के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर संपर्क करेंगे, तो आपको प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। महिला किसानों को ये हिचक रहती है कि पुरुषों के बीच में हम कैसे अपनी बात रखें, तो मैं आपको बताऊं कि प्रशिक्षणों में या स्पेशली महिला किसान गोष्ठियां भी हम आयोजित करते हैं। महिला किसानों के लिए हम उनके गांव में भी जाकर के कार्यक्रम करते हैं, उनके अनुरोध पे हम प्रशिक्षण उनके गांव में भी रखते हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगी तो बाहर की दुनिया कम से कम अपने गांव से जैसलमेर तक की दुनिया तो देख पाएंगी। तो आमंत्रण है आप सभी को कि आप आएं और जानकारी जुटाएं जो भी खेती बाड़ी में है।
0: बिल्कुल चारू जी, जो मोहर बहनों सुन रहे हैं, प्रयास कर से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ से और इन चीज़ों नाम से तो एक बात बीच में रखी थी कि महिलाओं बहनों ने जो वाटिका गृह वाटिका जो आप बागवानी की बात करो, तो मोटा मोटी देखो तो हर घर में अगर छोटी मोटी फुलवारी रोको भी लगोड़ी तो ज़्यादातर तो अपर महिला बहन वो ना देख रेख करें, क्योंकि आदमी और थोड़ी सी रुचि
1: कम होती है।
0: तो कई बहनों का जगह घड़ी है, छत मात है, बिजी है, तो अगर कोई बहन में रुचि रखनी चाहे और उम्र बाद में देखो कि आदि टाइम में जैविक माथे भी बहुत ज़्यादा बात हुई, तो चूँकि भी अगर महिला किसान बहनों भी सुन रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जगह है, ट्यूबवेल भी है, नहर पानी भी है, मतलब हमारी व्यवस्थाओं बढ़िया है और घर में जो रसोई में बीजे मीनो कई चीज़ों है और एड़े चीज़ों है जो कैसे पाछो आपो खाद रहे मीनो भी खुद, तो उम्र वास्ते मोरे बहनों ने जो गृह वाटिका में अगर रुचि रखे उम्र वास्ते थे कि चलो चाहे वो आप कौकर घर रहे महीने जो आप भी सब्जी उगा लें या कोई बीजी चीज़ कर लें, तो उम्र में आज जो को रुचि रख रहे उम्र वास्ते मोरे की चीज़ बता सो, क्योंकि महिलाओं और वर्ष है तो कोई कोई नई चीज़ होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, महिला हमारी रसोई की गृह मंत्री होती है, मैं ये मानती हूँ, और जैसे वो अपने मसालों के ख़त्म होने का ध्यान रखती है, अपने अनाज के ख़त्म होने का ध्यान रखती है, तो यहाँ मैं महिलाओं से अनुरोध करूँगी कि हमारे जैसलमेर के इस प्रदेश में जहाँ हरियाली कम है, वहाँ जहाँ हमें सब्जी लेने के लिए बाजारों तक पहुँच करनी पड़ती है, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे पतिदेव 10 रुपए की सब्जी लाएंगे कि 60 रुपए की लाएंगे, तो हम वो मौका भी उन्हें क्यों दें और अपनी अपनी रसोई में एक आयाम और जोड़ें और अपनी छोटी सी एक बाग गृह वाटिका लगाएं। गृह वाटिका का मतलब अपने घर में लगाई हुई कोई बाग बगीचा, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जैसे आप रसोई में छौंका लगाते हो और आपकी बेटी को जिज्ञासा रहती है कि माँ ये कैसे तेरे हाथ में इतना अच्छा जादू है कि बिल्कुल नपा तुला हाथ से सब्जी बनती है, तो गृह वाटिका में भी आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे अपनी चूड़ी खरीदने के लिए 100 रुपए खर्च करती हैं, बहनों अगर आप बाजार जब भी कभी मेले में या किसी भी माध्यम से जैसलमेर पहुंचे तो जो वहाँ कृषि केंद्र है वहाँ से आपको 20-20 रुपए में बीज मिल जाएंगे, और उन बीजों को अगर आप लाएंगी तो आप पूरे एक मौसम की सब्जियां अपने घर के लिए लगा सकती हैं। लगाने में भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप यूँ समझ लो कि अगर सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 क्यारियां बना लो, 7 क्यारियां बना के 7 सब्जियों के बीज लगा लो, अगर 20 रुपए का भी एक बीज आता है तो 7 × 14 = 140 रुपए में आप अपने घर में 3 महीने की सब्जी लगा सकते हो, मोटी मोटी बात, और सब्जी इतनी उतरेगी क्या हो सकता है कि आपके पड़ोसी को आपको देनी पड़े, अगर हो सकता है आप बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो। लगाने की कला में बस

0: बात वही है कि जैसे रोटी बनाना एक बार में नहीं आता, तो अभ्यास करोगे तो बीज की कैसे देखभाल करनी है, और वैसे जब कृषक परिवार से होती है ना महिलाएं, तो उन्हें बीज की कैसे सार संभाल करनी है इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये प्रयास जरूर करें कि जैसे हम खेती में दवाइयों का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन गृह वाटिका में ना करें, हम देसी उपचार करें। वो देसी उपचार के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर सकते हो। आपको जो भी जैविक सुझाव, जो भी जैविक हल है, चाहे वो नीम के तेल का इस्तेमाल है या निम्बोली के इस्तेमाल से या छाछ के इस्तेमाल से, जो भी हम जैविक तरीकों से उसको बचा सकते हैं, अगर सब्जियों में रोग लग जाते हैं या फल में रोग लग जाते हैं, तो हम वो कर सकते हैं। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन आप फल सब्जी लगाओ ताकि आपके बच्चों को वो चीजें मिलें, वो चीजें, वो सब्जियां जो कि जिनसे वो परिचित नहीं है। दूसरा, आपके घर का बजट भी संतुलित होगा, आप अपने घर में कुछ बचत कर पाएंगी। तीसरा, आपके परिवार का पोषण, जिस पोषण के लिए आंगनवाड़ी में हम बड़े शौक से पोषाहार लेने की कतार में होड़ लगाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो कोई अच्छी बात नहीं है। पोषण हमारे घर में है, हमें सुनिश्चित करना है कि हमें उसे कैसे पहुंचाना है। उस पोषाहार के पीछे मत भागिए, आप अपनी गृह वाटिका से ही अपने परिवार का पोषण सुनिश्चित कीजिए।
1: बिल्कुल काल जी, देखो क्या है, तो बात बता रहे हो। वैसे तो महिला बहनों खुद जो को भी था बात करिए, ये बिल्कुल निपुण होया करे, वो हर चीज नो देखती है। आप मतलब घर नो कहीं क्या था उनका, कहीं गृह मंत्री है, बिल्कुल वे में तो कोई फर्क है कौन। लेकिन आप जो हम बात करी बागवानी की, मेरे साथ साथ में कई महिला बहनों जो आप गौरव महीनों कृषि का कार्य करे, मिट्टी के बर्तन में काम करे या पशुपालन में भी, और बहुत ही ज्यादा काम रहा करे, ये माथे भी आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है मोरे महिला किसान बहनों की मदद किया करें।
0: बिल्कुल, ये तो मैं यहाँ महिला किसानों को बताना चाहूंगी कि अभी अगर आपने सुना होगा तो तगाराम जी को आपके जैसलमेर जिले से पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उनकी पारंपरिक कला के आधार पर उन्हें सम्मान मिला पूरे भारत में, और बड़े उत्साह से, हर्ष के साथ उनका स्वागत भी किया गया। हमारी महिलाओं को पता भी चला कि अरे देखो, एक वाद्य बजाने वाले, इस प्रकार का संगीत रखने वाले व्यक्ति को भारत सरकार ने इतने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। तो आपका जो पारंपरिक ज्ञान है, अपने अपने क्षेत्र का जो कशीदा है, चाहे मैं कहूँ कि हाथ के जो बने हुए वस्त्र हैं, या आप जो बॉटल के कवर बनाती हैं, या जो आपने दोवड़ बनाती हैं, या जो भी आप कला रखती हैं जो कि आपने अपनी दादी नानी से सीखी होगी, या मैं कहूँ कि कोई खाद्य उत्पाद भी बनाती है जो कि यहाँ की विशिष्टता रखता होगा, जैसे लाड़े की बाटियाँ यहाँ बनाई जाती हैं, यहाँ पे फॉग का रायता बनाया जाता है, ये बाहरी क्षेत्रों में इतना प्रचलित नहीं है। तो आप इन पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए भी कैसे उनको बाहर पहुंचाना है, इस संदर्भ में भी हम आपको प्रशिक्षित करते हैं, आपको बताते हैं। बीजों के संरक्षण, जो कि हमारे यहाँ की खासियत है जैसलमेर के, जो कहते हैं ना, हम मीठी बाजरी नहीं मिलती, तो उस मीठी बाजरी का बीज को कैसे संरक्षित करना है, महिलाएं वो करके भी अपने उद्यम को स्थापित कर सकती हैं, अपने इस पारंपरिक ज्ञान को बाहर तक पहुंचा सकती हैं।
1: कल जी आज आप बताया, और मोरे महिला जो किसान बहनों है और ये भी है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सारा राम।
0: धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के इस शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी की प्रस्तुति।

0: प्रिया का मानस ना।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म संगीत।

अलका याग्निक के गाए फिल्म गुरु के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जैसलमेर है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाईयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
2: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
2: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक

0: में ये फिफ्थ नंबर पे हैं। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शुभांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
2: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। उधर सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
4: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे MSME के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला टू

0: कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the 3rd T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying,

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की गाये फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम की इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है FM बैंड 101.8 MHz पर। आइए श्रोताओं सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

सीमा मिश्रा के गाए इस लोकगीत के साथ ही श्रोताओं राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम अपनो राजस्थान आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

राम राम सा गणी खमा। राजस्थानी संस्कृति और राजस्थान रा लोक संगीत सु रचिया बसिया कार्यक्रम आपनो राजस्थान लेर हाजिर है आप री रेडियो साथी बीना बाई सा। आकाशवाणी उदयपुर री आड़ी हूँ यो नजरानो आप ताई पोगी रियो। आज इन कार्यक्रम ने आपा नाम दीदो है नवरस रा रंग राजस्थान रे संग। जी मैं बाता होसी नवरस में रंगी राजस्थानी लोक संस्कृति री, लोक संगीत और नव रस्या से जुड़ी राजस्थान री महान विभूतियां री। राजस्थान मारो प्यारो राजस्थान, रंग रीत संगीत और भावना री धरती। भारत री प्राचीन परंपरा में भरत मुनि रा नाट्य शास्त्र में वर्णन लियो नवरसारो। ई नवरस मानव जीवन रा नौ भाव बतावे है, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत और शांत रस। नवरस किताबा में छपिया मात्र शब्द को दी, राजस्थान रा जन जीवन में ई नवरस इया धड़के जो हर श्वास ते काल जो। कार्यक्रम री उड़ी करा श्रृंगार रस्यू। श्रृंगार रस ने रसारो राजा मानियो गयो है। यो प्रेम नेह ममता मिलन और विरहरी भावना से सजायो जावे है। राजस्थानी लोक संस्कृति में श्रृंगार पग पग पर झलके है। पहरावो हाथारी मेहंदी माथेरो बोड़लो के सोला सिंगार लोक गीतारी मिठास और ढोला मारूरी अमर प्रेम गाथा। ई सब श्रृंगार रसरा सुंदर रूप है। प्रेम पगियो श्रृंगार जब भक्ति सुमिलियो तो माने मीरा बाई री ओलवाई। कहो कुसुम्बल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, भक्ति में भी भक्ति रो श्रृंगार। कानारे प्रेम में पावली मीरा, प्रेम री सबसे ऊंची पंक्ति चढ़ी निगावे है।

ಸಾವರಿಯೋ ಪರಣಾ.

Get it out of here.

दूजो रस है हास्य रस। राजस्थान रो लोक जीवन इनरी भौगोलिक स्थिति रे चालता थोड़ोक दोरो है। हंसी मजाक रोजी बाता में घुली मिली है। जिनसो इन दोरा जीवन में भी जीवन जीने रो चाव उछाव बढ़ियो रेवे। तेराणी जेठानी देवर भुजाई ननद भाभी इनरी नोक जोक कुटुंब में सहज सरल रूप से झलके है। हास्य रस ने राजस्थान माए निरखा तो जाण्या पिछाण्या राजस्थान रा नग सिंह चमकता साहित्यकार विजय दान देथा बिजी ने याद करा। जिनरी कलम से निकली केवड़िया लोक जीवन रे हास्य विनोद रे रंग ने अमर कर दियो है। लारे होली रो यो गीत जिन दिन हंसी मजाक रो कोई बुरो भी नहीं माने है।

तीजो रस करुण रस, संवेदना त्याग और समर्पण रो प्रतीक। राजस्थान रो इतिहास त्याग समर्पण री केवड़िया सो भरियो पड़ियो है। पग पग पर देश रक्षा री खातिर, स्वाभिमान री खातिर, स्वामी भक्ति री खातिर बलिदाना री गाथा आप सुनता आया हा। इन पूरा संसार में मारे चित्तौड़गढ़ री धरती गर्व करे इन बात पे कि अठे जो बलिदान भी हो विसु बड़ो कोई बलिदान नहीं हो सके। और करुणारी पुकार सिउ छाती फाटे है। नाम याद आवे वीर धाय पन्नारो, आपनो पूत सुला दियो बनवीर री तलवार तले, मेवाड़ रो उत्तराधिकारी बचावन खातिर। धन्य है इणसी धाय, धन्य है इणसी माए।

जो रेशम दे झूले उड़ता ही चवल सदा ही पाड़ा उड़ बाड़ा चाले तपते तावड़िए।

चौथे रस्म तो राजस्थान री माटी यूं घुली मिली जिया पानी में शक्कर घुल जावे। हाँ सा ठीक पिछाणिया, बात वीर रसरी होसी। महाराणा प्रताप और उनरा वंशज मेवाड़ री आन बचावन खातिर कितरा दुख सहया, पर माए जेड़ी माटी ने आज भी नहीं आवन दी। राजपुताना री धरती सिर झुकावे जठे प्रेम मिले, और सीस कटावे जठे बात स्वाभिमान री आवे।

0: धरी सदियों सो देखो भला अजे।
1: राजस्थानी धरती कदेई अन्याय रे सामने नहीं झुकी। अन्याय रे सामने उठे लो स्वर रौद्र रस है। धर्म री रक्षा खातर वीर रौद्र रूप धारण करे। अठे रौद्र रस री अनगिनत सेनानिया मिले है। रणभूमि में वीरा रो उछाह बेरी सामे निर्भर उबो रेणो। अर मायड़ माटी री रक्षा खातिर खुद ने न्योछावर कर देनो। ये रौद्र रस रो सजीव रूप है। याद करा वीर दुर्गा दास ने जो अन्याय रे सामे कदी नहीं झुकियो और इतिहास में नाम अमर कर गयो।

स्वामी भक्ति वीरता सुदेश प्रेम बलिदान हिंदू धर्म क्षत्रिय अमर रखो निशान गणेश मणिया।

छठो रस है भयानक रस, यो केवल डर कोनी बल्कि डर पे जीत रो प्रतीक है। भयानक रस भय और आशंका री अनुभूति जगावे है। जद अंधियारी रात वे सुनो जंगल वे रणभूमि में चारों मेर सुनसान और संकट रा बादल माथे मंडरावे, जद हिवड़े माए भय रो भाव जागे, ईसा समय में भयानक रस

डर्रो नी बल्कि हिम्मत और धीरज सो संकट रो आमो करण री प्रेरणा देवे है। जीवन में आड़ो बखत आवे जद धीरज रो हाथ पकड़ हिम्मत सो डट्यो रेवा में ही वीरता है। वीर तेजाजी री वीरता इन रस री याद दिलावे है।

आगा में बोले रे बेरन कोयली, अरे भागा में बोले रे काली कोयली, ये हड़ लारू मांडे मोर कंवर दे दारे, ये हड़ लारू मांडे मोर कंवर दे दारे, आभा में चमके रे बेरन तेजा आभा।

पुरानी कमर के तारे बाड़े में बंध रहा है बालक बैलिया। अरे हाली का बायोड़ा मोट निकले ते तारे हाली का बायोड़ा मोट।

जद मुश्किल घड़ी होवे और सुंदरता मिटाई जावे, जद जन्म लेवे विभत्स रस। यो रस मारे समाज में फैली कुरीतियां, बुराइयां और पाप सो दूर रहनो सिखावे हैं। समाज में फैलिया अंधविश्वास, घृणा और अरुचि रो भाव जगावे है। यो रस केवल घृणा उपजावा खातिर नहीं है, बल्कि इनने दूर कर स्वच्छता और सदाचारी राह अपनावारी प्रेरणा देवे है।

और आठवो रस है अद्भुत रस। यो रस तो राजस्थान री हवा में महके है। राजस्थान सौंदर्य पावणारे मनुहार री परंपरा, अठेरो पहरावो, खाणो पीणो, लोक संगीत, लोक कला, लोक संस्कृति अनोखी, अनूठी और अद्भुत है। अठेरा वाद्य यंत्र भी अनूठा, इनरी महिमा रो गुणगान आखा संसार तक पुगायो। अठेरा जन्मिया महान अध्येता कोमल कोठारी सा, रावण हत्तो, कामायचा, मोरचंग, अलगोजा, भपंग, खड़ताल, अणाने कोई नहीं ओळखतो पहला, अबे पूरो संसार अणारी ओळखाण करे है।

0: आपनों राजस्थान, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। जयपुर की
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपनों राजस्थान, आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्रॉप क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत

आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिश्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिश्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सीटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरी T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।